मीटिंग 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा

0: और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ। आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

हे माँ, आपकी ममता न्यारी है, आपकी कृपा से सारे बिगड़े काम बनते हैं, आपके दर्शन से हम सबके कष्ट दूर होते हैं, आप बड़ी दयालु हैं माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए माँ।

हमें सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि प्रभु की शरण में हम सुरक्षित रहेंगे।

0: अभी आपने सोनू निगम, अश्वनी भिड़े और पंडित जसराज के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज आप सुनेंगे बापू के बारे में पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत के विचार।
4: हर एक कदम में, हर क्षण में हमको महात्मा जी की अनुपस्थिति से जो क्षति और हानि हुई उसका बोध होता रहा। उनके न होने से जितने जटिल और कठिन प्रश्न हमारे सामने आए, उनको यदि वह होते तो हम किस तरह से हल करते, यद हर एक के मन में विचार प्रतिदिन आते रहे। आज हम महात्मा जी की प्रथम वर्षी को मना रहे हैं। यह अवसर है जब हमको सबको महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। आज महात्मा जी के चर्चा को सभी लोग कर रहे हैं। आज प्रातः काल से इस समय तक जहाँ भी जावें राम धुन सुनाई देता है, या महात्मा जी के जीवन चरित्र की गाथाएं और महात्मा जी के उपदेशों की बातें सब जगह सुनने में आती हैं। ऑल इंडिया रेडियो से और रेडियो के और स्टेशनों से भी महात्मा जी के ही बारे में हम लोगों को बहुत सी बातें फिर याद कराई जा रही हैं। अभी अभी यहाँ लखनऊ में भी इसका आज का कृत्य मनाया गया। करीब 2 घंटे हुए दिल्ली में भी आज राजघाट में बड़ा भारी जनसमूह उमड़ कर जमा हुआ था। करीब 4 बजे आज मुझे भी राजघाट में जाकर महात्मा जी के चरण कमलों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला था। यहाँ पर आज हम फिर महात्मा जी ने जो हमारा उपकार किया, जो महात्मा जी ने हमारे देश को और संसार को वरदान दिया, और ऐसे समय में जबकि सर्वत्र कलह की, एटम बम की, आपस में संग्राम और युद्ध और एक दूसरे के शोषण की बातें चल रही थीं,

एक महान आत्मा ने इस संसार में आकर हमको सच्ची विभूतियों का बोध कराया और बतलाया कि किस तरह से हमारा और संसार का कल्याण हो सकता है। महात्मा जी के कोटि के उच्च पुरुष संसार में बहुत ही कम पैदा होते हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश ने जिसने श्री राम और कृष्ण को, गौतम बुद्ध को, पाणिनि वाल्मीकि को और अनेक क्षेत्रों के नायकों को उत्पन्न किया, उसी देश ने इस युग में जबकि हम अंधकार में पड़े हुए थे, जब हम पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हमारे त्राण और रक्षा के लिए महात्मा गांधी को जन्म दिया। महात्मा गांधी ने हमको पराधीनता से मुक्त कराया। उन्होंने इस जर्जरित और मूर्छित देश में नवजीवन का संचार कराया, एक नई बिजली पैदा कर दी और जो लोग असहाय पड़े हुए थे, जिनको अपना भविष्य कुछ दिखता नहीं था, उनको फिर सजीव करके, उनकी आत्मा को सजग करके भारत को स्वतंत्र कराया। पर स्वतंत्रता ही नहीं, महात्मा जी का क्षेत्र तो असीम था, बड़ा विस्तृत था, उसमें जितने भी शुभ कार्य हो सकते थे उन सब का सम्मिश्रण था। महात्मा जी ने हमारे समाज में एक उथल पुथल पैदा की, उन्होंने एक सबसे बड़ी क्रांति हमारे देश में उत्पन्न की, पर उस क्रांति को एक माधुरी से, एक प्रेम से और एक अद्भुत अलौकिक रीति से उन्होंने उत्पन्न किया। उन्होंने हमारे देश में केवल यही नहीं कि हमें स्वतंत्र कराया, पर उन्होंने भारतीयता का पुनरुद्धार किया। उन्होंने ऐसे समय में जबकि हम लोग अपने भूतकाल को बिल्कुल भूल चुके थे, जबकि हमको यह मालूम होता था कि दूसरों पर ही निर्धारित होकर, दूसरों पर ही निर्भर रहकर हम अपना भला कर सकते हैं, यह बतलाया कि भारत की एक आत्मा है, भारतीयता एक सजीव स्रोत है जिसके अमृतपान से प्रत्येक भारतीय अपने को भी अमर कर सकता है, अपने देश को अमर कर सकता है और संसार को भी जागृत और उच्च कर सकता है। उस भारतीयता का पाठ महात्मा जी ने हमको पढ़ाया और उन्होंने हमको बतलाया कि सच और अहिंसा के ही आधार पर हमारे देश का और संसार का कल्याण हो सकता है। ऐसे समय में जबकि एटम बम का आविष्कार हो रहा था, जबकि संसार में विध्वंसकारी आयोजनों को उत्पन्न करने में औरों की सारी शक्ति लगी हुई थी, भारत ने एक ऐसे महापुरुष को उत्पन्न किया जिसने संसार को बतलाया कि इस किस्म के खूनरेजी से, रक्तपात से कोई भला नहीं हो सकता। केवल शांति के आधार पर, केवल अहिंसा के आधार पर, केवल आपस के सद्भाव से ही संसार का कल्याण हो सकता है। महात्मा जी भारत के महान रत्न थे, पर महात्मा जी का क्षेत्र सारा संसार था। वो सारे मानव समाज के हितैषी थे, वो ईश्वर पर अटल विश्वास रखते थे और उनके सामूहिक प्रार्थना में सभी धर्म ग्रंथों की चर्चा होती थी। वो गीता के अनाशक्ति योग का पाठ रोज कराते थे, पर उसी के साथ साथ बाइबिल, कुरान, झंडावस्ता आदि और भी धार्मिक ग्रंथों का वहाँ पर पाठ हुआ करता था। वो सब धर्मावलंबियों से एक सा प्रेम करते थे। वो संसार के सभी देशों के रहने वालों के हित को चाहने वाले थे। वो खासकर जो लोग पिछड़े हुए थे और जहाँ भी जो संकट और दुख में थे उनको सहायता पहुँचाना चाहते थे। यही उन्होंने अफ्रीका में किया, यही उन्होंने भारत में किया। वे दरिद्र नारायण के उपासक थे और इस देश में सबसे जो पिछड़े हुए दलित जाति के लोग थे उनको उन्होंने सबसे अधिक अपनाया, उनके साथ अपना विशेष संबंध स्थापित किया और हरिजन की उपाधि देकर उनको इस देश में सबसे ऊंचा करने का यत्न किया। महात्मा जी का तमाम कार्यों का आधार सत्य पर था। वो छल

और कपट को बुरा समझते थे। वो राजनीति में भी किसी कपट का स्थान नहीं रखते थे। उन्होंने हमको बतलाया और सिखलाया कि केवल सत्य के आधार पर हम अपना और संसार का भला कर सकते हैं, और यही हमें सिद्धांत अपने सामने रखना है। चाहे हम कुछ भी करें, हमें कोई छिप कर बात करनी नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा जहाँ तक हो, एक समन्वय और संधि करके हमें सब कार्यों को करना है। यही भारत की प्राचीन रीति चली आई, यही महान आत्माओं का उपदेश हमारे लिए रहा, और आज भी जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है, हमें इस उपदेश को अपने सामने रखना है, ताकि हमारा देश आजकल की जो पाश्चात्य जगत की गिरी हुई रीतियां हैं उनको न अपनावे, और अपने स्वतंत्रता के युग में भी अपने प्राचीन आध्यात्मिकता के आधार को अपने सामने रखकर उसी में अपने नए मंदिर की रचना करने में सफल हो। हमने जो कुछ भी किया वह महात्मा जी के आदेश से किया। महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर जितने हम चले उतने ही सफल हुए, और जब कभी भी हम उससे विचलित हुए हम गिरे। हमारा कल्याण महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से ही हो सकता। महात्मा जी ने हमसे कहा, बार बार कहा कि सांप्रदायिकता को जगह मत दो, इससे कोई लाभ और हित नहीं होगा, फिरके वाराना बातों से नुकसान होता है। हिंदू मुसलमान ईसाई सब में एकता होनी चाहिए, पर एक ऐसे समय में जबकि एक तरह का पागलपन हमारे देश में छा गया, उनके इन सब उपदेशों को लोगों ने ठुकरा दिया, और परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। लाखों हमारे भाई अपने घरों को छोड़कर दूर दूर आए, लाखों को हर तरह के कष्ट पहुँचे, और आज भी लाखों हर तरह की व्यथा उसके कारण भुगत रहे हैं। कई स्थानों में हजारों मारे गए, परंतु ऐसी अवस्था में भी जबकि मार काट क्यों चल रही थी, महात्मा जी निर्भीक होकर जहाँ मुसलमानों के अड्डे थे उन जगहों में जाते थे, और उन्होंने पूर्वी बंगाल में क्या किया, उन्होंने कलकत्ते में क्या किया, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, उससे आप सब परिचित हैं। फिर महात्मा जी ने हमारे देश का उपकार अपने जीवन का प्रतिक्षण देकर किया, और वही उपकार महात्मा जी ने अंत में अपने जीवन का बलिदान देकर किया। हमारा देश बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता, हमारी स्वतंत्रता दो दिन का स्वप्न होकर दूर होकर गायब हो जाती, परंतु महात्मा जी ने रक्षक के तौर पर हमारा त्राण किया, और हमारे 30-40 करोड़ नर नारियों के रक्षा को का भार अपने ऊपर लेकर इस संसार में हत्या को भी सहन किया, और हमें वह उपदेश दे गए जो कि उनकी अमर कीर्ति को बनाए रखेगा। परंतु हमें ऐसे अवसर पर जबकि हम महात्मा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके उपदेशों को सामने रखकर उनके अनुसार चलने का यत्न करना। आज हमको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की ओर से जो संदेशा मिला है उसको सामने रखना। सर्वोदय दिवस

किसी से बैर नहीं रखते थे। यदि किसी बात से महात्मा जी को दुख और वेदना सबसे अधिक होती थी तो वह अकर्मण्यता से, भीरुता से और ऐसी बातों से जिससे कि मनुष्य ऊंचा उठने के बजाय नीचा गिरे। इसलिए हमको महात्मा जी के उन उपदेशों को सामने रखकर साहस से कार्य करना है, पर कार्य करना है। महात्मा जी कर्मयोगी थे और उन्होंने हमें कर्म का पाठ पढ़ाया। एक क्षण भी किसी को खराब करना नहीं है। अपने जीवन का प्रतिक्षण, जो कि सबसे बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के लिए है, उसको सत्कार्य में लगाना। और हमें यह याद रखना है कि महात्मा जी जब युद्ध भी करते थे, जब वह सत्याग्रह करते थे, तब भी वह शांति को बनाने में अपनी सारी शक्ति लगाते थे। और कहीं भी जरा अशांति होती थी तब आंदोलन को स्थगित कर देते थे। अब

0: जबकि हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें यह भूलना नहीं है कि केवल शांति और अमन के ही आधार पर हम अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। और इसको भी याद रखना है कि महात्मा जी का सबसे ज़्यादा जोर था रचनात्मक कार्य पर। महात्मा जी घरेलू धंधों को, ग्रामोद्योगों को और सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, और वह चाहते थे कि और भी कुछ न हो तो मनुष्य कम से कम एक घंटे तो चरखा तब भी चला ले, परंतु कभी कोई अकर्मण्य होकर न रहे। इसलिए आज जब भारत में हमको बहुत सी चीज़ों का उत्पादन करना है, जबकि हर एक तरह की कमी है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इस बात का ध्यान रखना है कि महात्मा जी के उपदेश को सामने रखते हुए वह अपने प्रशिक्षण का सदुपयोग करे और कुछ न कुछ उत्पादन करने में वह अपने समय को लगावे। ऐसे समय में हमको याद रखना है कि महात्मा जी का भारतीयता पर अटल विश्वास था, महात्मा जी का धर्म था भारतीय संस्कृति। उस संस्कृति में, उसके शुद्ध प्रवाह में जितनी भी आज तक यहाँ नदियाँ आईं, जितने भी छोटी छोटी धाराएँ आईं, वो सब मिश्रित हो गईं, और आज हजारों बरस का हमारा पुराना संस्कृति का जो अमृत का प्रवाह हो रहा है, उसका पवित्र जलपान हरेक को करना है। और सबको यह समझना है कि प्राचीन काल से लेकर वैदिक समय से लेकर जब राम और कृष्ण, गौतम बुद्ध और अशोक, हर्षवर्धन, पाणिनि, अकबर, ये सब भारत के भारतीयता के।
1: अभी आप सुन रहे थे बापू के बारे में पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत के विचार। गांधी चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए, बरसात में खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने रखने हेतु मृदा संरक्षण विषय पर शत्रुघ्न प्रसाद से रानू जायसवाल की बातचीत।

0: देखो भैया, समय समय पे अपनी खेती किसानी में कृषि वैज्ञानिक हरे आवत हैं, वो कृषि विशेषज्ञ भैया हरे आवत हैं। तो आज अपन जो विषय है बरसात में खेती की उर्वरक क्षमता बनाए रखने हेतु मृदा संरक्षण, इस विषय पे हमारे बीच आए हैं शत्रुघ्न प्रसाद, भूमि संरक्षण निरीक्षक हैं प्रयागराज में। शत्रुघ्न भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि खेती की तैयारी में कौन कौन बातें के बहुत ध्यान रखे के चाहिए।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में
0: हाँ
1: इस समय धान की रुपाई का समय है,
0: हाँ हाँ
1: तो हम लोग अपने खेत की तैयारी करने का सबसे मुख्य कारण हमारा ये होता है कि हम
0: हाँ
1: सबसे पहले मेड़बंदी करें चारों
0: अच्छा
1: तरफ से
0: हाँ
1: और अच्छे से करें,
0: हाँ हाँ
1: जिससे जब बरसात हो तो
0: हाँ
1: बरसात का पानी खेतों में रुके
0: अच्छा
1: और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वो नीचे जाए, और जब उसमें खरपतवार अनेक प्रकार के रहते हैं
0: हाँ
1: तो जब पानी बरसात होता है भरता है तो उसकी जड़ें सड़ जाती हैं,
0: अच्छा हाँ
1: कमज़ोर हो जाती हैं, वो मर जाती हैं,
0: हाँ हाँ
1: और जिससे मिट्टी की सारी पोषक तत्व बरकरार रहती हैं।
0: अरे खेते का माटी खेते में रह जाता,
1: जी
0: दूसरे खेते में ना जाता।
1: जी जैसे सरकार ने एक बार नारा दिया था
0: हाँ हाँ
1: कि खेत का पानी खेत में,
0: अच्छा
1: वैसे खेत की मिट्टी खेत
0: खेत
1: में।
0: में
1: तब जब भी आप खेती करने से पहले
0: हाँ हाँ
1: अपनी जल निकासी
0: हाँ
1: की प्रॉपर व्यवस्था कर लेंगे,
0: हाँ हाँ
1: मेड़बंदी कर लेंगे,
0: हाँ
1: तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रसायन

0: रासायनिक खादों का प्रयोग करने से आप बचेंगे।
1: अच्छा
0: जैसे बरसात के मौसम में खेत की मिट्टी
1: हाँ
0: और खाद क्षमता बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण सॉयल कंजर्वेशन बेहद आवश्यक है।
1: अच्छा
0: इसके लिए खेत में जो मेड़बंदी की बात मैंने कही,
1: हाँ
0: मेड़बंदी उतना ही महत्वपूर्ण है
1: हाँ
0: जितना आप बीज का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बीज मुझे बोना है,
1: अच्छा
0: कौन
1: अच्छा
0: सी प्रजाति लेनी है।
1: हाँ, कौन प्रजाति कितना दिन में होता
0: ध्यान
1: है, मतलब ओकर गुणवत्ता हम सभी ध्यान रखे थे।
0: में रखते
1: तो
0: हैं,
1: ऐसे ही यह है कि कम से अगर
0: उतना ही महत्वपूर्ण हमारे खेत की मेड़बंदी है। खेत से जो जल निकासी है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए,
1: हाँ
0: प्राकृतिक तरीके से मिट्टी का पोषण करने के लिए हरी खाद जैसे ढेंचा है, सनई है,
1: हाँ
0: इस सबको अपने खेत में बो के और कल्टीवेटर से पलट देना चाहिए।
1: अच्छा
0: उससे क्या है कि जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो हैवी मतलब मजबूत रहेंगे,
1: अच्छा
0: जिससे किसान भाइयों को रासायनिक खाद ना के बराबर जो है प्रयोग
1: प्रयोग
0: करना
1: करना
0: पड़ेगा,
1: पड़ेगा।
0: जिससे कम लागत में अधिक उपज होगी।
1: अच्छा
0: अब जैसे इसी में एक जल निकासी और मेड़बंदी जैसे किसान भाई कहें कि कैसे किया जाए,
1: हाँ।
0: तो ड्रेनेज बंडिंग मेड़ को मजबूत रखिए। जैसे
1: अच्छा
0: मैंने पहले भी बोला है, खेत के चारों ओर ऊंची मजबूत मेड़बंदी कर लें। बारिश के समय जब तेज पानी आता है
1: अच्छा
0: बहता है
1: हाँ
0: तो वो
1: हाँ
0: मिट्टी के साथ जो पोषक तत्व हैं
1: वो
0: वो
1: भी
0: भी
1: बह
0: सब चले
1: जाते हैं।
0: जाते हैं,
1: अच्छा।
0: बाहर बह जाते हैं। तो जब आपके मेड़ मजबूत रहेंगे तो आपकी मिट्टी और पोषक तत्व आपके खेत
1: बढ़िया
0: में
1: है।
0: रहेंगे।
1: अच्छा ये बताओ मैं शत्रुघ्न भैया, उर्वरक क्षमता के बढ़ाए रखे विधा और के बढ़ावे विधा कोने कोने बातें का ध्यान रखे के चाहिए।
0: देखिए किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जैविक एवं हरी खाद का प्रयोग करें और
1: हाँ
0: सही प्रयोग करें।
1: अच्छा
0: जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि सनई हुआ, ढैंचा
1: ढैंचा
0: हुआ,
1: हुआ।
0: इन सबको अगर आप अपने खेत में बोएंगे और पलटेंगे उससे वो सड़ेगा, खेत की मिट्टी जो है वो उसमें उर्वरक क्षमता कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो इसमें है कि बरसात के दिनों में खाद को सदैव मिट्टी के अंदर दबा के ही देना चाहिए, बारिश के समय दबा के देनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश का बौछार आए तो ऊपरी सतह पे बौछार पड़े तो खाद नीचे रहे तो वो बहेगा नहीं।
1: अच्छा
0: सबसे बड़ा कारण तो ये है, आप बच जाएंगे।
1: हाँ
0: बरसात में
1: हाँ
0: खाद कैसे देंगे किसान भाइयों? बरसात के मौसम में खाद जो है आपको हमेशा मिट्टी के नीचे दबा के देनी चाहिए,
1: अच्छा
0: और बरसात में खाद तुरंत दीजिए, पौधों में जो है वो मिल जाता है। कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कम से कम मात्रा में, उतने ही
1: अच्छा
0: रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। खाद देने के तुरंत बाद पानी ना लगाएं
1: अच्छा
0: और पानी अपने से निकलने भी ना दें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब जैसे
1: अच्छा
0: हरी खाद का प्रयोग करें, मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ,
1: हाँ, सनई ढैंचा पे आप
0: सनई
1: बार
0: ढैंचा
1: बार
0: बार
1: जा रहे
0: बार
1: हैं।
0: इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
1: हाँ
0: हमारे किसान भाई अभी तक पैदावार को लेके उस पर विचार न किए, अपने भविष्य पे, आने वाले भविष्य पे, मिट्टी पे। उन्होंने इतना कीटनाशक और हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद,
1: हाँ
0: पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा प्रयोग कर लिए कि हमारी उत्पादन तो बढ़ गई, लेकिन उत्पादन के साथ साथ उस पेस्टिसाइड ने, खरपतवार नाशक ने और रासायनिक खादों ने हमारे बॉडी को, हमारे घर के वातावरण को, हमारे समाज के वातावरण को बड़ा
1: दूषित कर दिया।
0: दूषित कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उसको तो छोड़ ही दीजिए,
1: हाँ
0: ये तो हुआ उसके साथ साथ जो मिट्टी को उसने खराब किया।
1: हाँ हाँ हाँ
0: जैसे क्या है किसान भाइयों, हमारे एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि आप जब भी कोई फसल का सिलेक्शन करिए, चुनाव करिए,
1: हाँ
0: तो कोशिश करिए कि आप एक ही फसल बार बार मत लीजिए।
1: अच्छा उसका मतलब अदल बदल के वो है।
0: अदल बदल का आप लेंगे तो उसमें
1: हाँ
0: आपकी क्या है कि आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी और दूसरी चीज पैदावार अच्छा मिलेगा। एक
1: अच्छा
0: ही फसल आप लेने से मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं कमजोर हो जाते।
1: अच्छा शत्रुघ्न भैया, मृदा संरक्षण कैसे करें? किसान भैया बहनी हरण के सबसे बड़ा चुनौती जो ना है माटी के संरक्षण करे के है, वो कैसे करें और उसे उन्हें लाभ बहुत होगी चाहिए।
0: किसान भाइयों, मृदा संरक्षण मैंने पहले ही, शुरू करने से पहले ही बताया था कि ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई बीज और खाद चुना।

0: करें। देखिए, मृदा संरक्षण एक कटाव की जो प्रक्रिया है उसमें जो मिट्टी के कटाव का अपरदन और उसकी उर्वरकता जो कैपेसिटी है उसको रोकता है
1: अच्छा।
0: मृदा संरक्षण करने के। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो मेड़बंदी निभाएगी।
1: अच्छा
0: और इसमें दो तीन चीज़ें और हैं कि
1: हाँ
0: जैसे आप खेती करिए तो जैसे मैंने बताया बार बार एक ही फसल को मत लीजिए, और जो है सीढ़ीवार खेती करिए, जैविक खेती करिए, और इसमें एक चीज़ और है सघन वृक्षारोपण करिए। सघन वृक्षारोपण से आपको ये फायदा होगा कि जब सघन वृक्षारोपण करेंगे तो जो वृक्षारोपण रहेगा उसकी जड़ें जो है मिट्टी को बांध के रखेंगी।
1: अच्छा, कुल मिलाए जुलाए के जो उन बड़ा मेड़ है न, किनारे किनारे का हम से पेड़ लगाई सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ किसान भैया बहनी हरे सरपत्तों लगाई देते हैं जुट्टा, जो उन्हें से माटी का संरक्षण बना रहता है।
0: वो बहुत ही सुंदर है और वो हमारे किसान भाई बहुत जागरूक है। मैं
1: हाँ
0: बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं
1: अच्छा।
0: वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो अपने मेड़ पे सरपत घास लगा दे रहे हैं, जो बड़ी बंधिया हैं
1: हाँ।
0: वो जो है मिट्टी को कटने नहीं देती हैं।
1: अच्छा, तो मतलब ये समय सरकार विभिन्न प्रकार की योजना किसान भैया बहनी हरण भी दिल्ली आए हैं।
0: किसान भाइयों, सरकार द्वारा इस समय विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। उस योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है IWMP,
1: अच्छा
0: इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम।
1: अच्छा
0: इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मृदा संरक्षण की उचित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
1: अच्छा
0: किसान भाइयों, अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आप अपने जनपद स्तर में कृषि विभाग से संपर्क कर लीजिए, और
1: अच्छा
0: आपके खेतों का जो मृदा संरक्षण का कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। वो बंधी भी बनाते हैं, बंधा भी बनाते हैं, आपके गांव का तालाब भी पुनरुद्धार करते हैं,
1: अच्छा
0: नए तालाब भी बनाते हैं,
1: हाँ
0: आपको जानवर के लिए भी व्यवस्थाएं देते हैं, उसमें लाइवलीहुड प्रोडक्शन सिस्टम चलती हैं। लेकिन जो खास कर है उसमें मृदा संरक्षण का कार्यक्रम बहुत अच्छा है।
1: शत्रुघ्न भैया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे बरसात में खेत की उर्वरक क्षमता बनाए रखने हेतु मृदा संरक्षण विषय पर शत्रुघ्न प्रसाद से रानू जायसवाल की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता उदर में होने वाले सामान्य रोग।
1: उदर के रोगों से संबंधित वह बीमारियां होती हैं जो मनुष्य की आंतों, पित्ताशय, पैंक्रियास और लिवर को प्रभावित करती हैं। कुछ सामान्य तौर पर होने वाले उदर रोग इस प्रकार हैं: हार्टबर्न, सीने में दर्द और जलन इसके प्रमुख लक्षण हैं। यह पेट में बनने वाले एसिड के खाने की नली यानी ईसोफेगस में आ जाने के कारण होता है। सामान्यतः कभी कभी होने वाले हार्टबर्न से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि यह जल्दी जल्दी होता है या लगातार बना रहता है तो इसका कारण जानना व निदान आवश्यक है। सीने में जलन अधिकतर अधिक मसाले और मिर्चदार भोजन करने से, खट्टे फलों से, तली भुनी चीज़ें खाने से व चाय, कॉफ़ी और शराब के अधिक सेवन से होती है। यदि हार्टबर्न अधिक समय तक बना रहता है तो इससे खाने की नली डैमेज हो सकती है और बैरेट्स ईसोफेगस नामक बीमारी हो सकती है जो बाद में कैंसर में परिवर्तित हो सकती है। लगातार होने वाले हार्टबर्न के लिए चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवाएं लेना चाहिए और यदि किसी जांच की आवश्यकता हो तो परामर्श लेने के पश्चात कराना चाहिए। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर व खान पान को स्वास्थ्यकर बनाकर हम हार्टबर्न से बचाव कर सकते हैं। अपच या इनडाइजेशन, यह एक आम समस्या है। खाने के बाद पेट फूलना व अधिक देर तक पेट भरा भरा सा रहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। पेट के ऊपरी भाग में दर्द

0: हो सकता है और अपच की समस्या से बचने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए और इसके अतिरिक्त हम कुछ घरेलू नुस्खे जैसे अदरक की चाय या बेकिंग सोडा खाने के बाद अगर लेते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा आधे कप पानी के साथ लेना चाहिए, इससे इनडाइजेशन में आराम मिलता है। तीसरा कॉमन बीमारी है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मल आंतों में ही जम जाता है। इसकी वजह से गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन और सरदर्द जैसी परेशानियां होती हैं। सामान्यतः मनुष्य को एक या दो बार रोज मल त्याग करना चाहिए। मल त्याग रोज न होने व अधिक जोर लगाने की स्थिति को ही हम कब्ज कहते हैं। भोजन में फाइबर यानी रेशे की कम मात्रा लेना कब्ज का प्रमुख कारण है। बहुत अधिक रिफाइंड भोजन जैसे मैदे या मैदे से बनी खाद्य पदार्थ, नूडल, पास्ता, मोमोज, ये कब्ज का कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कम पानी पीना, तनावपूर्ण जीवन शैली होना, कम नींद लेना या आवश्यकता से भी कम भोजन करना, ये भी कब्ज का एक कारण हो सकता है। कुछ दवाएं और थायराइड हार्मोन की कमी भी कब्ज का कारण होती हैं। कुछ घरेलू उपाय जैसे नींबू पानी, पपीता, शहद, अमरूद व किशमिश कब्ज में लाभकारी होते हैं। कब्ज के मरीजों को पानी अधिक पीना चाहिए। कब्ज पुराना होने पर चिकित्सकीय सलाह से दवाएं लेना उचित होता है। दस्त लगना या डायरिया। दस्त का अर्थ है सामान्य से अधिक पानी जैसा मल होना। यह अधिकतर पाचन तंत्र में वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट के संक्रमण से होता है। दूषित भोजन व पानी दस्त का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ दवाएं भी डायरिया कर सकती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। पानी जैसे मल के अतिरिक्त मरीज को पेट में ऐंठन, बुखार, उल्टी और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकते हैं। दस्त से बचाव के लिए खान पान स्वच्छता से बनाना चाहिए, भोजन ठीक से पकाना चाहिए, पानी सुरक्षित पीना चाहिए और भोजन हाथ धोकर ही करना चाहिए। पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS का घोल लेना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवाएं प्रयोग करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव कर स्वास्थ्यकारी आहार से, नियमित व्यायाम और अल्कोहल आदि मादक पदार्थों से बचाव कर इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता उदर में होने वाले सामान्य रोग, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन प्रसारित किया जाएगा और दिन में 12:15 पर रोहित मालवीय का तबला वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर ज्योति पांडे से भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत में कलाकार होंगे मोहनलाल जैसल, कल्लू निराला और छंगूलाल लहरी। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:30 पर सुनिएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनिएगा। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया, युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर, शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे

सुभाष यादव की वार्ता हमारे गांव, उनकी ऐतिहासिक थाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता उपमा कालिदासस्य। रात 8:00 चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे कहकशा रात 9:30 पर। रात 10:00 माला तनखा का लिखा नाटक सुनिएगा पहचान। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यद् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिक

0: क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां ईआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभुशुंड कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सभी जीव हर्ष विषाद भय प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म से भजन, लीजिए सुनिए सीमा फिल्म का ये भजन मन्नाडे की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन, और अभी आपने सुना सीमा फिल्म का ये भजन। मन्ना डे की आवाज़ थी, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, रचना थी शैलेंद्र की। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार।

0: विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए उनके परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए। साथ ही पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
2: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का CEO नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले VIP पास की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। विशेष पास की नई रेफरेंस ID अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं, लेकिन नए पास

0: अब नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद ही बन सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
1: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज से 15 जुलाई तक लखनऊ दौरे पर रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है।
3: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए।
0: प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ जिलों में भारी वर्षा के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती सहित कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश और जलभराव के चलते संभल, गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। उधर अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीलीभीत जिले में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के बहाव क्षेत्र में जलभराव से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल तक के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: वेस्ट यूपी में हैवी टू वेरी हैवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई है और

0: अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
1: सोनभद्र जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में मड़ेया गांव के पास कल शाम एक ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज, 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन राग भैरवी में ठुमरी।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन राग था भैरवी में ठुमरी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे पंकज कुमार श्रीवास्तव, हारमोनियम पर महेश्वर दयाल और तानपुरे पर श्रीकांत वैश्य। उपशास्त्रीय संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, हमें चाहिए आपस में भाईचारा बनाए रखें। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4थे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों

0: रिलेशंस की नींव है, पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमा

0: वर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।

0: उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार

विचार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर

इंग्लैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government formed 7-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in 4th T20 International to take 3-0 lead in 5-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में 4th टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरक ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरक अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरक उमंगों की अक्कासी होती है।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया

0: स्वामी बनना चाहते हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
0: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
2: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामनिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मीटिंग वाज़े इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटजिक शराकतदारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा ने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फ़रोग देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदामात की भी तायीद की। ये बातचीत सियासी तब्दीलियों के बावजूद सिक्योरिटी और तवानाई के अहम शोबों में मुसलसल और मुस्तहकम तआवुन को यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है।
4: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है जो उम्मीद यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी 2 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
5: ऑकलैंड में वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहां आबाद भारतीय अफराद के साथ साथ न्यूजीलैंड के कई लोग भी रिवायती माओरी इस्तकबाल किया ओरा मोदी के साथ उनका खैर मकदम करने के मुंतजिर हैं। न्यूजीलैंड के माली और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर खवातीन नौजवान कारोबारी रहनुमा तालीमी और कम्युनिटी अरकान जनाब मोदी के इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि इससे तिजारत तालीम सरमायाकारी खेलों और सकाफती तबादलों के शोबे में इश्तराक मजीद मुस्तहकम होगा। भारतीय बिरादरी के अरकान का कहना है कि तकरीबन 40 साल बाद भारतीय वजीर आजम का यह दौरा उनके लिए बड़े फख्र और गहरे जज्बात का लम्हा है। न्यूजीलैंड के लोगों का भी कहना है कि वजीर आजम का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमबंसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे।

0: न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर-ए-आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
5: फसा। अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है जीवन में रिश्तों का महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और रिश्ते उसके जीवन को सुरक्षा और खुशी देते हैं। सुख दुख में साथ खड़े होकर हमारे रिश्तों में मजबूती प्रदान करते हैं। अपनों का साथ हो तो हम डिप्रेशन और तनाव जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी हमारे हर समस्याओं में हमारी मदद करते हैं। रिश्ते हमें प्यार, त्याग, सहानुभूति जैसे गुण भी सिखाते हैं। हमारी सामाजिक पहचान और समाज में हमारा स्थान हमारे रिश्तों और व्यवहार से ही तय होता है। श्रोताओं, आजकल हमारे जो रिश्ते हैं उनमें सिर्फ दिखावा रह गया है। लोग रहते तो एक ही शहर में हैं, लेकिन किसी के घर जाने का उनके पास टाइम ही नहीं है। आज हमारे फ़ोन में इतना बैलेंस होता है कि चाहे जितनी बातें की जाएं, पर लोग बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर बात करते हैं। सुबह उठे तो व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग विश कर दिया और सोने गए तो गुड नाइट। आज हमारे रिश्ते सिमट कर रह गए हैं। लोग अपने माँ, पिता और अपने बच्चों तक ही ज़्यादा खुश रहते हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं रिश्तों के महत्व के बारे में। श्रोताओं, एक समय था जब लोग अपने सगे संबंधियों से बात करने, उनका हाल जानने के लिए हफ्ते 10 दिन का इंतज़ार किया करते थे। श्रोताओं, वो समय था चिट्ठियों का, जब लोग अपने सगे संबंधी या रिश्तेदारों का हाल जानते थे चिट्ठियों के माध्यम से। और जब किसी के घर डाकिया पत्र लेकर आता था तो खुश होकर अपने पत्र में लिखे परिवार वालों का हाल मालूम करते थे। आज के डिजिटल युग में हम भले ही इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते और उन रिश्तों में जो मिठास थी वो खत्म होती सी नज़र आ रही है। एक समय था जब लोग पड़ोसी के सुख में खुशी और दुख में दुख जाहिर करते थे। कभी कोई समस्या आ जाए तो एक दूसरे का साथ देते थे। हमारे जो आज के रिश्ते हैं वो सिर्फ अपनों तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनों को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने माँ पिता को भी भूल रहे हैं। तभी तो हमारे यहाँ इतने वृद्ध आश्रम हैं। श्रोताओं, हमें अपने रिश्तों को बचाना होगा। अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए आपस में बातचीत करें, अपने परिवार को समय दें, उनका सम्मान करें। रिश्तों में मनमुटाव होना सामान्य है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपसी प्रेम सहयोग से हमारा रिश्ता मजबूत बन सकता है। हमें अपने रिश्तों को बिखरने नहीं देना है, बल्कि उसे संजोना है। जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है, इसके बिना हम अधूरे हैं। ये रिश्ते असफल होने पर, निराश होने पर, अकेला महसूस करने पर हमारा सहारा

0: ये इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज यहीं पर समाप्त होता है। प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पापा लाइए 3000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: पापा लाइए 3000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
1: अरे पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह मुझे भी सिखाओ, अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए। दिल ढूंढता है फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, रिश्ते विश्वास और प्रेम की समझ मजबूत नींव पट्टी के होते हैं। रिश्तों को हमेशा प्यार और सम्मान के साथ सींचते रहना चाहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए आखिरी बाजी फिल्म का ये गीत, अमित कुमार, साधना सरगम और सुरेश वाटकर की आवाज़ों में संगीत दिया है अनु मलिक ने, रचना है इंदिवर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आखिरी बाजी फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का।
1: जून माह के मध्य में प्रयागराज के प्रभारी मंत्री जलशक्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता पर आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला, विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रमों का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा, महिला एवं गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है, जिसने गांव, गरीब, किसान को विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक और पवित्र संगम नोच पर एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बृहद कार्यक्रम में योग अभ्यासियों सहित 9000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश दिया। इस अवसर पर योग और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का पवित्र माध्यम है। नियमित योग करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रही है, जो हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जून माह के तीसरे सप्ताह में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 140 नव दंपतियों का विवाह कार्यक्रम आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संबंधित विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह में मेजा ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम SCP का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मेजा गायत्री देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों का मार्गदर्शन भी किया गया। इस माह के प्रथम सप्ताह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BVG रामजी योजना लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में BVG रामजी योजना के लॉन्चिंग के सभी को बधाई देते हुए कहा कि BVG रामजी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक को 252 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी, परंतु जी रामजी योजना के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य विकसित ग्राम सभा बनाने का है। और जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
2: देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, प्रयागराज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर आए। विकसित भारत जी राम जी आने के बाद गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव की जो सड़कें हैं, इंटरनल सड़कें हैं, वो भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे, भी सभी क्षेत्रों में यह बहुत ऐतिहासिक काम होगा।
1: जुलाई माह के प्रथम सप्ताह विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का उद्घाटन अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर राजेश

0: कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशू पांडे एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संचारी अभियान का संचालन दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की विशेष भूमिका के विषय में चर्चा की एवं दस्तक अभियान में स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत आशा एवं आंगनवाड़ियों के द्वारा घर घर पर जाकर डायरिया प्रभावित परिवारों को जिंक ओआरएस एवं क्लोरीन की गोली वितरण पर चर्चा की। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3 रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 35 से अधिक कंपनियों के द्वारा हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसको लेकर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क, ऑनलाइन पंजीकरण और पोर्टल पर जनपद में समय समय पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले की सूचना प्रदान की जा रही है। इस हफ्ते शुरू हुई हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही कृषि कार्यों में भी तेजी से कार्य शुरू हो गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की खेती को लेकर कृषि विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का।
2: गाजियाबाद स्थित नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी नेट्रा का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने नेट्रा की 52 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में वस्त्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का वस्त्र उद्योग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और भारत अब केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मांगें भी पूरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में वस्त्र क्षेत्र में बड़े जुड़े हुए कई अनुसंधान संस्थान आधुनिक तकनीक और परीक्षण सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिला है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या का हालिया घटना पर कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में वाल्मीकि पार्क में आयोजित 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाग लिया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ अभियान में उनके योगदान का महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दौरे के दौरान आयोजित किसान कार्यशाला में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों से अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए किसानों को कंपोजिट खाद और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों की कार्यशाला में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं कि हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारे जो पुराने संसाधन थे उन पर हमें जाना है, हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग मिलाना है।
2: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्व खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर गांधीनगर क्षेत्र में एक महिला को उसकी परसों पुरानी आवंटित दुकान का कब्जा वापस दिलाया गया। पीड़िता सुमन बत्रा ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की थी कि वर्ष 1992 में नगर पालिका से लीज पर मिली दुकान पर अवैध कब्जे कर लिया गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को खाली कराया और उसका कब्जा सुमन बत्रा तथा उसके परिवार को सौंप दिया। जिलाधिकारी रविंद्र मादर ने कहा कि अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।
4: प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और

0: और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से के दुकान पे कब्जा किया हुआ था और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। जनता दर्शन में मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई, तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पुख्ता हो गया कि सारे कागज इनके नाम पे, दुकान इनकी है, जिस दुकान को खाली करा लिया गया और इन्हें कब्जा वापस प्रदान कर दिया गया।
1: उन्होंने कहा कि सरकारी अथवा वैध रूप से आवंटित संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे के निकट स्थित करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सामईन आदाब, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं आपका मेजबान आसिफ इकबाल आपके लिए उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ।

दोस्तों, कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी बातों, अपनी यादों और अपनी लिखी हुई तहरीरों से इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने आते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने उर्दू शायरी और हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नया मुकाम दिया, नाम था कतील शिफाई।

हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। उस बंदाए खुद्दार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता। करना है जो सर मार का ए जीस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतू पर, भूचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता।

क्या आप जानते हैं कि उनका नाम कतील शिफाई कैसे पड़ा? उन्होंने अपने उस्ताद हकीम शिफा रहमानी के नाम से शिफाई लिया और अपना तखल्लुस रखा कतील। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबां डोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरा इसरार की चाहत मेरी बेताब ना हो, वाकिफ इस गम से मेरा हलका अहबाब ना हो, तो मुझे जब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है। ये भी क्या बात कि छुप छुप के तुझे प्यार करूं, गर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं, जब किसी बात को दुनिया की नज़र तौलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने इस फिक्र में काटें कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम ना आए, लेकिन जब तेरी सांस मेरी सांस में रस खोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरे जलवों का है पर तेरी मेरी एक एक गज़ल, तो मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के ना चल, पर्दादारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है, शायरी

वह दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। रहेगा तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात है मेरी जिंदगी वफा न करे। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तक खाए मगर गिला न करे। अगर वफा पे भरोसा रहे न दुनिया को, तो कोई शख्स मोहब्बत का हौसला न करे। बुझा दिया है नसीबों ने मेरे प्यार का चांद, कोई दिया मेरी पलकों पे अब जला न करे। जमाना देख चुका है परख चुका है इसे, कतील जान से जाए पर इल्तजा न करे। चलिए इन्हीं जज्बात को समेटे हुए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में उनकी गाई ये बेहद मकबूल गज़ल।

दान दोनों के सिनेमा जगत के लिए भी काफी गीत लिखे जो बेहद मकबूल हुए। फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का कुमार सानू की आवाज में गीत तेरे दर पर सनम चले आए और इसी फिल्म का अलका याग्निक की आवाज में गीत बादलों में छुप रहा है चांद क्यों और नाराज फिल्म का कुमार सानू की आवाज में संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को कपिल शिफाई नहीं लिखे जिनको लोग आज भी पसंद करते हैं और मोहब्बत से सुनते हैं।

दोस्तों, 90 की दहाई में जब भारतीय फिल्म मेकर महेश भट्ट ने अपनी फिल्मों के लिए गाने लिखने के लिए सरहद पार कतील साहब को याद किया तो वो तारीख बन गई। इसके अलावा मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, पंकज उदा जैसे गुलकारों ने कतील साहब की शायरी को आवाज़ दी।

0: तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
1: परेशान रात सारी है सितारों, तुम तो सो जाओ,

0: 11 जुलाई 2001 को इस अजीम शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके लिखे नगमे आज भी हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में हैं और हमारे दिलों में महफूज हैं। सामईन, आज के हमारे इस सफर को रोकने का वक्त आ गया है। दोस्तों, कतील शिफाई साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक दुनिया में मोहब्बत रहेगी, जब तक टूटे दिलों को सहारा देने के लिए लफ्जों की जरूरत होगी, कतील साहब अपनी शायरी के जरिए जिंदा रहेंगे। आपको कतील साहब का कौन सा शेर, गजल या गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। अब अपने दोस्त आसिफ इकबाल को नगमगी प्रोग्राम से दें इजाजत। सुनते रहिए उर्दू प्रोग्राम, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए कतील साहब की शायरी। आकाशवाणी लखनऊ आपके साथ है। आदाब।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति आनंद के स्वर में ये भजन। माफ कीजिएगा, आप सुन रहे हैं ज्योति पांडे के स्वर में भजन।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह

0: से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है नागरिक कर्तव्य बनाम नागरिक अधिकार। नागरिक कर्तव्य और नागरिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां अधिकार हमें एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देते हैं, वहीं कर्तव्य हमें राष्ट्र और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। अधिकारों का उपभोग करने के साथ साथ एक नागरिक का समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व हैं, जिसे नागरिक कर्तव्य कहते हैं। राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना और समाज में शांति अनुशासन को सुनिश्चित करना है।

0: हमारे संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य के बिना अधिकार निरंकुश हो जाता है और अधिकारों के बिना कर्तव्य का कोई औचित्य नहीं बचता। यदि आप समाज में शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो आपको दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और राष्ट्र के नियमों का पालन करने का कर्तव्य निभाना होगा। नागरिक अधिकार वे चीज़ें हैं जो आप राष्ट्र से मांगते हैं, और कर्तव्य वे चीज़ें हैं जो राष्ट्र आपसे अपने अस्तित्व और समृद्धि के लिए अपेक्षा करता है।
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ प्रयागराज। हमारे अधिकार कानून के समक्ष सभी समान हैं। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे विचार शांतिपूर्ण संघ बनाने और देश भर में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की भी हमें पूरी आज़ादी है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, आइए सुनते हैं मधुकर शरण जी की क्या कहते हैं अधिकार और कर्तव्य पर।
1: श्रोता बोल रहा हूँ, आज के विषय नागरिक कर्तव्य बनाम नागरिक अधिकार के विषय मुझे ये कहना है कि अगर कर्तव्य पर सभी लोग ध्यान दें तो अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन आज अधिकार के लिए सभी लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, बट अपने कर्तव्य के प्रति कोई सजग नहीं है। अगर मेरा ये कर्तव्य हो कि मैं दूसरे के अधिकार का हनन ना करूं तो मेरे अधिकार स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं, किंतु ये कुछ दौड़ती भागती दुनिया का परिणाम है आज कि सभी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं किंतु वो कर्तव्य जिससे कि दूसरे के अधिकार का हनन ना हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने अधिकार के बारे में सोच रहे हैं और दूसरे पर एक प्रकार से जुल्म कर रहे हैं, उसके अधिकार के बारे में ना सोचकर या अपने कर्तव्यों के से विमुख होकर के सिर्फ अपने अधिकार की बात करके। निश्चित रूप से कर्तव्य और अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है परिवार, समाज, मोहल्ले, आस पड़ोस के प्रति। तत्पश्चात अधिकार, मैं समझता हूँ कि कभी हनन हो ही नहीं पाएगा अगर मैं अपने

श्रोताओं, अक्सर जब हम कभी पार्क में जाते हैं तो वहाँ चिप्स या बिस्किट के पैकेट को खाने के बाद फेंक देते हैं। रोड पर चलते चलते थूकना, गाड़ी को तेज़ रफ्तार में चलाना, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें ये सारे हमारे कर्तव्य हैं, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जीवित प्राणियों की रक्षा करना, ये सारे हमारे कर्तव्य होते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ प्रयागराज। हमें सामाजिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए और सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। भ्रष्टाचार से दूर रहना, ईमानदारी से जीवन यापन करना भी नागरिक कर्तव्यों में शामिल है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने देश को मजबूत बनाते हैं बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी करते हैं। नागरिक के कर्तव्य हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाते हैं। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है और समाज में शांति और समृद्धि बनी रहती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं मोहनलाल जैसल, कल्लो निराला और छंगूलाल लहरी और साथी। पहले आपको सुनवाएंगे मोहनलाल जैसल और साथियों के स्वर में लोकगीत। लीजिए ये सुनिए देवी गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना खेमटा, कलाकार थे मोहन लाल जैसल और साथी। लीजिए अब सुनिए कल्लू निराला और साथियों के स्वर में ये झूमर गीत।

अभी आप सुन रहे थे निर्गुण कलाकार थे कल्लू निराला और साथी। लीजिए अब सुनिए छंगूलाल लहरी और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

0: अभी आपने सुना लचारी, कलाकार थे छंगूलाल लहरी और साथी लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार।

0: सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि एहसासों को पर्दे पर उतारा, जिनके हर फिल्म एक कविता लगती है, हर कहानी इंसानी जज्बातों की गहराई को छू जाती है।
1: बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेता, दूरदर्शी निर्देशक और बेमिसाल निर्माता गुरु दत्त पर।
1: चलना।

वो गुरुदत्त जिन्होंने सामाजिक ताने बाने के साथ साथ प्रेम, तन्हाई, सफलता और अकेलेपन को ऐसी खूबसूरती से दिखाया कि हर कहानी अपनी सी लगती है।

9 जुलाई 1925 बेंगलुरु में जन्मे गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। पिता शिवशंकर राव पादुकोण स्कूल में हेडमास्टर थे, जबकि मां वसंती पादुकोण एक शिक्षिका होने के साथ साथ लेखिका भी थी। यूं कह लें कि घर में साहित्य और कला का पूरा माहौल था। बचपन कोलकाता में बीता। युवा होने पर उन्होंने प्रसिद्ध नृत्याचार्य उदय शंकर के सांस्कृतिक केंद्र अल्मोड़ा में नृत्य और मंच कला का प्रशिक्षण लिया और यहीं से अभिनय, संगीत और कैमरे की समझ विकसित हुई। साल 1944 फिल्मी सफर की जो शुरुआत हुई वो पुणे के प्रभास स्टूडियो से, जिसने गुरुदत्त की तकदीर बदल दी।

0: लगा लें। बाजी की सफलता ने गुरुदत्त को नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने आर पार, जिसका कि गाना आपने सबसे पहले सुना, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी जैसी फिल्मों से ये साबित कर दिया कि वे हर तरह के सिनेमा को बना सकते हैं।
1: जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
0: जी हाँ, 1957 फिल्म प्यासा, जिसने उन्हें विश्व सिनेमा के महान निर्देशकों की कतार में ला खड़ा किया।

एक असफल कवि की पीड़ा, समाज की संवेदनहीनता और इंसान की तलाश। प्यासा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक फिलॉसफी थी। साहिर लुधियानवी के शब्द, हेमंत कुमार का संगीत और गुरुदत्त का अभिनय, सबने मिलकर इतिहास लिख दिया।

साल था 1959। गुरुदत्त ने कागज के फूल फिल्म का निर्माण किया। आज इसे भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से गिना जाता है, लेकिन रिलीज के समय यह फिल्म असफल रही थी, जिसने गुरुदत्त को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, यही वो फिल्म थी जो आगे चलकर मास्टरपीस साबित हुई।

श्रोताओं, गुरुदत्त साहब की वो फिल्में जिन्हें आज भी विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, उनमें थी बाजी, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, मिस्टर एंड मिसेस 55, साहिब बीवी और गुलाम और सीआईडी।

श्रोताओं, साल 1959 में गुरुदत्त ने जब कागज के फूल का निर्माण किया तो भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से इसे गिना गया। और आगे चलते हुए कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने सिर्फ गंभीर फिल्में ही नहीं की, बल्कि 1960 में आई चौदहवीं का चांद ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड सक्सेस हासिल की। लखनऊ की तहजीब, नजाकत, नफासत और मोहब्बत को जिस खूबसूरती से इस फिल्म में पेश किया गया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है।

श्रोताओं, गुरुदत्त की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी बेहतरीन कहानी, शानदार छायांकन, लाजवाब संगीत और हर किरदार में गहरी संवेदनशीलता। उनके साथ साहिल लुधियानवी, एसडी बर्मन, ओपी नैयर, मोहम्मद रफी, वहीदा रहमान और गीता दत्त जैसे कलाकारों ने यादगार काम किया। आगे चलकर गुरुदत्त और गीता दत्त ने जीवन पथ पर साथ चलने का फैसला किया और एक दूजे के हो गए। उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 आज भी अपनी लाइट कॉमेडी और बेहतरीन संगीत के लिए याद की जाती है।

साल 1962, फिल्म आई साहिब बीबी और गुलाम, जो गुरुदत्त प्रोडक्शन की एक और कालजयी फिल्म साबित हुई। मीना कुमारी का अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा के सर्व

श्रेष्ठ अभिनय में से गिना जाता है। इस फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना मिली। ये फिल्म गुरुदत्त साहब की संवेदनशीलता और उनके कलात्मक दृष्टिकोण को बखूबी दर्शाती है।

स्पष्ट होता हूँ, कई बार जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया। ऐसा ही कुछ हुआ 10 अक्टूबर 1964 को, जब मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में गुरुदत्त साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

गुरुदत्त साहब, जिनकी फिल्मों को विश्व सिनेमा की धरोहर माना जाता है। गुरुदत्त वो शख्सियत थे जिन्होंने कैमरे से सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों की रूह कैद की थी। ये सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत अतुल यादव को। नमस्कार।

श्रोताओं, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर दे सकते हैं। फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था गुरुदत्त साहब पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन।

हर दिल की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खिदमत प्रोग्राम यूथ एक्सप्रेस

हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम यूथ एक्सप्रेस। जहां बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे जुड़ते हैं हमारी जिंदगी, हमारे सपनों और आपके भविष्य से। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति।

और अगले आधे घंटे तक हम साथ रहेंगे दोस्तों, एक ऐसे टॉपिक के साथ जिससे आज का हर युवा किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे अडल्टहुड यानी सपनों से जिम्मेदारियों तक के सफ़र के बारे में। दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे थे तो सबसे बड़ी टेंशन हमारे पास होती थी कि भाई होमवर्क पूरा नहीं हुआ, कल क्या होगा, स्कूल में डांट तो नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियों की लिस्ट भी बढ़ती चली जाती है। कभी करियर की टेंशन, कभी जॉब की, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, तो कभी खुद को साबित करने का प्रेशर। और इस बीच एक सवाल मन में आता है, क्या सच में मैं बड़ी हो गई हूँ? क्या हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जो हम बचपन में सोचा करते थे? अडल्टहुड सिर्फ एज नहीं है दोस्तों, ये एक जर्नी है जहाँ डिसीजंस आपके होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स भी आपको ही एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों, आज के इस सफ़र में हम बात करेंगे अडल्टहुड आखिर है क्या, क्यों बड़े होने का एक्साइटमेंट कभी कभी स्ट्रेस में बदल जाता है, करियर, मनी और मेंटल हेल्थ जैसी चुनौतियों को कैसे हैंडल करना है, और कैसे रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने के साथ साथ अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की बातचीत हो सकती है हमारी और आपकी खुद की कहानी।

दोस्तों याद है बचपन में हम कहते थे काश जल्दी बड़े हो जाए, क्योंकि हमें लगता था कि बड़े होकर कोई नहीं डांटेगा, कोई बंदिशें नहीं होंगी, लेट नाइट मूवीज देखेंगे और पॉकेट मनी अनलिमिटेड होगी और दोस्तों अपनी मर्जी की लाइफ होगी। लेकिन रियलिटी में सैलरी आने से पहले EMI का मैसेज आ जाता है और वीकेंड आते ही रेस्ट नहीं बल्कि पेंडिंग मिस वर्क्स याद आने लगते हैं और यही तो है रियल अडल्टहुड। लेकिन दोस्तों अडल्टहुड सिर्फ प्रॉब्लम का नाम नहीं है, यही वो समय है जब हम अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करते हैं।

अपने फैसले खुद लेना सीखते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सीखते हैं कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन खूबसूरत जरूर होती है।

दोस्तों, आजकल हम युवाओं से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, अब आगे क्या करना है, जॉब कब लगेगी भाई, सेटल कब होना है। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने बैठी है। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की जो जर्नी होती है ना, वो अलग होती है। कोई जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हैं या वो इंसान पीछे है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारी रेस है ना, हमें अपनी रेस में ज़रूर रहना है। ये नहीं देखना है कि हम धीरे हैं या तेज़ हैं, लेकिन बस अपने लक्ष्य को टारगेट रखना है। और एक बात और है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम करियर बनाने के चक्कर में इतने ज़्यादा उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपनी खुद की मेंटल पीस को खो देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि सुबह उठकर अपने काम को खुशी से हम कर रहे हैं, ये सक्सेस का मतलब होता है। रात को सुकून से सो पा रहे हैं, ये उसका मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस भागते जा रहे हैं, अपनी खुद की जो नीड्स हैं, खुद की हेल्थ है, खुद की मेंटल पीस है, उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो इन बातों का भी ध्यान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर इसी के साथ अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की, तो पहली सैलरी शायद हर युवा की सबसे इमोशनल मेमोरी होती है दोस्तों। पहली कमाई से पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेना, घर का कोई छोटा खर्च उठाना या फिर खुद के लिए कुछ खरीदना, ये

सिर्फ पैसे नहीं कॉन्फिडेंस भी देता है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बजट बनाना, सेविंग्स करना और फ्यूचर के बारे में सोचना भी होता है। छोटी छोटी सेविंग्स भी आगे बढ़कर आगे चलकर बड़ी ताकत बनती है। आजकल सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ जो होती है ना वो एकदम परफेक्ट दिखाई देती है, ट्रैवल, सक्सेस, लग्जरी, स्माइल्स। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सोशल मीडिया किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाता, सिर्फ उसके भी कुछ अच्छे पल दिखाता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी की रील से मत कीजिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं यूथ एक्सप्रेस मेरे यानी ज्योति के साथ। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने अपनी अभी तक आपसे क्या क्या बातें की। तो इस सफ़र में अभी तक हमने करियर की बात की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की और फैमिली एक्सपेक्टेशंस की बात की। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हर युवा की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है, वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि आज का युवा कई तरह के दबाव से गुजरता है, करियर, कंपटीशन, फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनल लाइफ। ऐसे में कभी मन उदास हो, थकान महसूस हो या लगे कि सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपनी इमोशंस को छुपाइए मत। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या ज़रूरत पड़े तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना बिल्कुल सामान्य बात है दोस्तों। खुद का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं होती है बल्कि ज़रूरत है। छोटी छोटी आदतें भी मदद करती हैं, जैसे पूरी नींद लेना, व्यायाम या फिर वर्कआउट करना, म्यूज़िक सुनना, डिजिटल डिटॉक्स करना और अपने लिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बस थोड़ा सा मी टाइम निकालना। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जिससे आप खुद को, अपने मन को शांत और स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के समय में वर्क लाइफ बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही सफल होंगे, लेकिन बिना आराम के लगातार काम करना हमें थका सकता है। बिकॉज वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट सो आर योर फैमिली, योर हेल्थ एंड योर हैप्पीनेस। बैलेंस ही असल सक्सेस नहीं है। कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ चाय पीना, दोस्तों से खुलकर हंसना या अपनी किसी हॉबी को टाइम देना, ये भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।

का एक पड़ाव नहीं बल्कि सीखने, जिम्मेदारियां निभाने और खुद को बेहतर बनाने का सफर है। इस सफर में कभी चुनौतियां आएंगी, कभी खुशियां मिलेंगी, कभी सफलता और कभी असफलता भी, लेकिन हर अनुभव हमें पहले से बेहतर इंसान बनाता है। याद रखिए, लाइफ डजंट बिकम ईजियर, वी बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर आज के प्रोग्राम से आप एक बात अपने साथ लेकर जाएं, तो वो ये हो कि दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर भरोसा रखिए और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं।

तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का ये यूथ एक्सप्रेस का सफ़र आपको पसंद आया होगा। आपको आज का विषय कैसा लगा, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप चाहें तो हमें बता सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8004926250। अगर आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर

0: वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:15 पर आज आप सुनेंगे रोहित मालविया का तबला वादन, और रात 10:30 इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अनिता सेन का उपशास्त्रीय गायन। दिन में 12:30 श्रोता सुनेंगे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार।

1:15 पर महिलाओं के लिए विशेष हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे, जिसमें आज श्रोता सुनेंगे ड्रीम गर्ल और दुनकी फिल्म के गाने। 2:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा।

0: वंश यादव की वार्ता, हमारे गांव, उनकी ऐतिहासिक थाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी। साथी ग्रामीण भाई आनंद लेंगे मोहनलाल जैसल और साथियों के गाए लोकगीतों का। संस्कृत कार्यक्रम में 7:31 पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता उपमा कालिदासस्य। 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 अंग्रेजी कार्यक्रम, 9:30 कहकशां और 10:00 सुनिएगा नाटक पहचान। आलेख माला तनखा का होगा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, रानी कनौजिया, उम्र 19 वर्ष 4 माह, कद 5 फिट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। इनके दाहिने बाजू पर काले व लाल रंग से मां का टैटू बना हुआ है। ये 25 मई 2026 को 9:30 के आसपास नया गांव अल्लापुर थाना जरचौं से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9219284544। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9219284544। अगली सूचना इस प्रकार से है, शिवांगी, उम्र 22 वर्ष, कद लगभग 5 फिट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। ये अपने साथ 1.5 साल का एक बच्चा लिए हुए हैं। ये 6 जून 2026 को सरसवा से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 7527987492। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 7527987492। और इस वक्त की जो आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, नाम कोमल, पुत्री फकीरेलाल, उम्र लगभग 17 वर्ष, कद 5 फिट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये 23 मई 2026 को 2:00 के आसपास ग्राम सैयद सरावा थाना चायल से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 8009003262। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8009003262। सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रोहित मालविया का 3 ताल में तबला वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रोहित मालविया का तीन ताल में तबला वादन। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
2: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है हेलो फरमाइश, और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी। जी रोशनी जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
3: मैम फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, और गाने की बोल है दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे।
2: भाई फिल्म तो ज्यादा नहीं चली थी लेकिन गाने सारे हिट थे इसके।
3: जी
2: सभी गाने बहुत अच्छे थे, उसी में से इन्होंने रोशनी जी ने एक अच्छा सा गाना चुना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको।
3: मैं नाम लेना चाहती
2: हूं। हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
3: हमारी दीदी हैं दहिया मां प्रताप से शांति दी सुनियो दीदी, और आशीष उनकी बेटी है, और जदुआ का पूर्व प्रताप सर से हैं प्रीति दी शिखा जी, और हमारे भाई जी सूरज कुमार संदीप कुमार मंदिर कुमार सुशांत कुमार पूजा, और हमारे मम्मी पापा हैं बड़े मम्मी हैं और आप हैं और सभी सुनने वाले श्रोता।
2: तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है जानवर। कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: पवन कुमार निषाद, निजी कला बन पुकारा।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गंगा जमुना सरस्वती का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: साजन मेरा उस पार है, मिलने का दिल भी खराब है।
0: बहुत ही मशहूर गाना आपने चुना है पवन जी, तो आपकी इस पसंद को हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, हमें खेद है कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम हम आपको सुचारू रूप से नहीं सुनवा पाए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चमेली फिल्म का गाना, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिल का संगीत और आवाज़ सुनिधि चौहान की।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में यह

0: पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फ़र्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिला के भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a 2-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate

साथ ही उनके खानदान के अफराद और रिश्तेदार भी शक के दायरे में हैं। पुलिस ने कई दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दरमियान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट अब ऐसे इंतजाम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा न हों। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी VIP पास सिस्टम में भी तब्दीलियां की गई हैं। खसूसी पासेस के लिए नई रेफरेंस ID अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए पहले से जारी किए गए खसूसी पासेस की तौसीक की जा रही है, लेकिन नए पासेस नई रेफरेंस

0: या की गई हैं। खसूसी पासेस के लिए नई रेफरेंस आईडी अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए पहले से जारी किए गए खसूसी पासेस की तौसीक की जा रही है, लेकिन नए पासेस नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। मरकजी वजीर ममलकत बराए ख़जाना और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल मिर्ज़ापुर में पार्टी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की ताकि तंजीमी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में नजराने की चोरी की तहकीकात में जो भी कसूरवार पाया गया उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत ने कल देर रात 20 आईएएस अफसरान का तबादला कर दिया, जिसके नतीजे में मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बड़ा रद्दोबदल हुआ है। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल और मेडिकल एजुकेशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सारिका मोहन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। नेहा शर्मा जो इस ओहदे पर काम कर रही थी उनको DGME और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन का चार्ज दिया गया है। इटावा के चीफ डेवलपमेंट अफसर अजय कुमार गौतम का तबादला करके उन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स गाजियाबाद फर्स्ट बनाया गया है। मुजफ्फरनगर में ADM एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तैनात संजय कुमार सिंह को इटावा का नया CDO मुकर्रर किया गया है। एक मुल्क एक इंतखाब पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी आज से 15 जुलाई तक लखनऊ का दौरा करेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: रियासती हुकूमत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक मीटिंग में खसूसी हिदायत दी थी कि इस मुहिम को अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में अवाम की शिरकत के साथ मनाया जाए। इसको जहन में रखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों के वज़रा मुख्तलिफ अज़ला में जाएंगे और पौधे लगाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे, जबकि नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी भी लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। रियासत के कई अज़ला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। कुछ अज़ला में मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई हैं। लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती समेत कई अज़ला में कल हल्की से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का विशेष हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम।

0: ये कुछ पल संगीत की उस नदी में बहें जहां हर लहर एक एहसास लेकर आती है।
1: तो आज इस कार्यक्रम में हमने जिन दो फिल्मों के गीतों शामिल किया है वो फिल्में हैं ड्रीम गर्ल 2 और डंकी। वैसे अपने श्रोताओं को हम ये बताते चलें कि इसके लिए आप हमें फ़ोन नंबर किस पर करेंगे, तो हमारा फ़ोन नंबर है 0532242349।
0: और हमें संकेत मिल रहा है कि पहले कॉलर इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हम आपका। कैसे हैं आप?
2: जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। बताइए सिसोदिया जी क्या करते हैं आप?
2: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: खेती किसानी का काम करते हैं, तो इस समय जो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तो ये जो बारिश के बूंदे हैं, पानी है, ये खेती किसानी के लिए कैसे हैं? फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है?
2: जी अभी तो जितना पानी गिरता है ना दीदी, उतना फायदेमंद होता है किसानों के लिए। क्योंकि अब कुएं तालाब नदियाँ सब भर जाएंगे ना।
0: जी जी,
2: तो फिर से मतलब गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाने के लिए मतलब तैयारी करेंगे लोग, जैसे सोयाबीन की फसल कटाई होने के बाद में।
0: जी जी जी, तो बताइए आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप तक भेजा जाए?
2: जी ड्रीम गर्ल का सुनवा दीजिएगा, कोई सा भी गीत।
0: ड्रीम गर्ल का कोई सा भी गीत,
2: तो हाँ जी, वो भी सुन सकते हैं आप, किसी शायर की नजर, ड्रीम गर्ल वाला गाना है ना।
0: जी जी सिसोदिया जी, हम आपको बता दें कि आज इस फिल्म में हमने ड्रीम गर्ल 2 के गानों को शामिल किया है, तो आप
2: हाँ, तो फिर आप इसमें से कोई सा भी सुनवा दीजिएगा ड्रीम गर्ल 2 में से।
0: ठीक है, तो ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत उज्जैन में आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं, आनंद लीजिए इस गीत का। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो गृहलक्ष्मी के इस सुरीले सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं निकहत
1: और मैं प्रीति। स्वीकार करें हमारा
0: नमस्कार। श्रोताओं, हेलो गृहलक्ष्मी वो प्रोग्राम है जहाँ अल्फाज सिर्फ बातें नहीं दिल से दिल तक का सफर होते हैं, जहाँ हर आवाज एक कहानी है, हर आवाज में छुपा होता है एक नया अफसाना।
1: ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ सवाल भी हैं और जवाब भी है। हर सवाल में छुपा होता है एक एहसास और हर जवाब में मिलता है एक नया रास्ता, जहाँ हर दिल की धड़कन को मिलता है एक सुर और हर सुर में छिपी होती है जिंदगी की खूबसूरती।
0: तो आपकी फरमाइशों का गुलदस्ता लेकर इस फोन इन कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए कुछ पल जिंदगी की भागदौड़ से चुराएं, कुछ पल यादों की गलियों में बिताएं।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं?
1: रेखा यादव कुकुरहाड़िया प्रयागराज से मैं।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये बताइए, आज क्या कर रही हैं आप इस समय?
1: इस समय मैम हम रेडियो सुन रहे हैं।
0: रेडियो सुन रही
1: अच्छा,
0: हैं?
1: तो ये बताइए, रेडियो पर आप
0: हाँ,
1: अपनी पसंद
0: आवाज़ें
1: का,
0: सुन रहे हैं मैम।
1: जी, तो रेडियो पर आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
0: मैम मैं तेरा रास्ता देखूंगी, धुन की फिल्म का।
1: जी, तो गीत तो हम आपको सुनवाएंगे रेखा जी, लेकिन कुछ बातें भी आपसे हम जरूर करना चाहेंगे। तो ये
0: यस मैम,
1: बताइए,
0: करिए, हम भी करेंगे
1: जी, तो क्या करती हैं रेखा जी आप?
0: मैम। हम हाउसवाइफ हैं, घर पे रहते हैं, सिलाई लाई करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सिलाई जो आप करती हैं, शौकिया करती हैं या प्रोफेशनली?
0: नहीं मैम, चाहे जो हो, जैसे अगर किसी का लग रहा है तो सिलते हैं, पर हमारा भी है कि हम कपड़ा सिले,
1: बहुत अच्छी बात है ये तो।
0: पर घर से
1: और
0: खाली नहीं मिलता है। अच्छा, तो रेखा जी, आप बता रही हैं कि आप हाउस वाइफ हैं, आप घर संभालती हैं, और इतने सारे व्यस्त समय में आप हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए समय निकाल लेती हैं, तो इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो आज
1: मैडम जी,
0: जी
1: हम अपना रेडियो का आवाज तेज करके सारा काम करते रहेंगे, आपका रेडियो सुनते रहेंगे।
0: जी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब रेडियो सुनते हुए हम कोई काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी आसानी से काम भी पूरे हो जाते हैं, है
1: काम जल्दी जल्दी होता
0: ना?
1: है मैम।
0: जी, बहुत
1: जी
0: आसानी से और जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं, है अच्छा,
1: ना?
0: रेखा जी ये बताइए, आज हम आपको पहले तो ये बता दें कि आज की दो फिल्में हैं ड्रीम गर्ल 2 और डंकी, तो आप किस फिल्म की फरमाइश करेंगी ये हमारे हमें पता चले तो हम उस गाने को क्यों करें, और आपसे थोड़ी और भी बात।
1: धुन की फिल्म का मैम।
0: नहीं, आज हमारे ये हेलो फरमाइश,
1: जी
0: ये हेलो
1: जी
0: गृह लक्ष्मी है, तो इसमें आपकी फरमाइश पे जो दो फिल्में हैं वो ड्रीम गर्ल 2 या डंकी,
1: जी
0: इनमें से
1: अब
0: कोई हम आपको सुनाएं?
1: डंकी डंकी फिल्म का
0: जी,
1: मैम।
0: डंकी। रेखा जी ने पहले ही हमें बता दिया था कि डंकी फिल्म का गीत ये सुनना
1: अच्छा
0: चाहती
1: अच्छा
0: हैं।
1: जी
0: तो रेखा जी, आपकी रेडियो सेट पर पहुंच रहा है डंकी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। आनंद लीजिए इस गीत का और बने रहिए कार्यक्रम के साथ।
1: थैंक यू
0: नमस्कार।
1: मैम।

0: और बढ़ते हैं अपनी अगले कॉलर की तरफ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते। हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
1: विकास बोल रहे हैं, दादनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर। नमस्कार मैम।
0: नमस्ते विकास जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए, हमारे श्रोताओं से जब हमारी बात होती है तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी रेडियो सुनते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं।
0: जी। देखिए, रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो आप श्रोताओं के लिए ही प्रसारित होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप श्रोता खुश हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे केंद्र से इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो आप श्रोता सुनते हैं और खुश होते हैं। बताइए,
1: बिल्कुल आपका कार्यक्रम ऐसा है ही जो कि बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बहुत शुक्रिया। और रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं विकास जी?
1: इसमें सबसे ज्यादा बोलते नगमे आपकी पसंद जो मधु जी करती हैं वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे सारे कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं दिन भर जितने प्रसारित किए जाते हैं।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: विकास जी, जब आप अपने सफर में होते हैं तो आप अपने रेडियो सेट पर जो ये गीत सुनते हैं क्या उसे पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल कर पाते हैं, बिल्कुल।
2: तो ये आपके सफर को और आसान बना देता है कि कहीं कहीं आपका कंसंट्रेशन भी कुछ गड़बड़ होता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत आसान होता है और अच्छा लगता है।
0: जी अच्छा। तो बताइए, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: ड्रीम गर्ल 2 का कोई भी।
0: ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का कोई भी गीत?
2: तो ड्रीम गर्ल 2 का ये गीत आपके पास पहुँच रहा है, इसे एंजॉय कीजिए और अपने सफर में बने रहिए।

0: हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि इस समय जारी है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी, और हमारे अगले श्रोता टेलीफोन लाइन पर हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो,
1: देखिए
2: हेलो
0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में, अपना परिचय दीजिए। हेलो हेलो
1: निखत जी, लग रहा है फोन लाइन में कुछ गड़बड़ी है। हेलो, हाँ अब आपकी आवाज़ आ रही है। आपका नाम?
2: मैं मधु कनौजिया, पुलिस लाइन प्रयागराज जहाज चौराहा से।
1: मधु जी, आपका स्वागत है हमारे हेलो गे लक्ष्मी में, और कैसी हैं आप ये बताएं।
2: जी मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: क्या करती हैं आप?
0: जी जी बिल्कुल, घिसा पिटा काम नहीं है मधु जी, हाउस वाइफ का काम। देखिए हाउस वाइफ का जो काम होता है वो 24 घंटे का होता है, और एक हाउस वाइफ घर के सभी लोगों की ख्याल रखती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं, तो ये घिसा पिटा काम नहीं होता है। ऐसा मत कहिएगा।
1: ऐसा नहीं है, जब आप नहीं रहती हैं तो उनको इसकी कमी बखूबी खलती होगी, बस ये बात है कि वो जताते नहीं होंगे। ये बताइए मधु जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
2: मैं सिंगिंग करती हूँ, और मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, रेडियो तो मुझे बेहद पसंद है।
1: अच्छा, तो मधु जी ये बताइए, आज आपकी किस गीत की फरमाइश है?
2: कोई भी गाना।
1: अच्छा देखिए, अब आपने अभी हमें बताया कि आपको सिंगिंग का शौक है, तो हम आपको ड्रीम गर्ल 2 का कोई भी गाना सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुना दें अपनी इस प्यारी सी आवाज में। कुछ भी गुनगुना दीजिए।
2: अच्छा ठीक है, मैं गा रही
1: हूं। जी जी जी।

0: और हमारी एक और श्रोता टेलीफोन लाइन पर हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है फरमाइश। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, जहाँ तक मैं पहचान रही हूँ कि राजेंद्र जी बोल रहे हैं।
1: नहीं, मेरा नाम नितेश आद्य है।
0: अच्छा, माफ कीजिएगा। हमारे एक नियमित श्रोता हैं राजेंद्र जी, वो भी प्रतापगढ़ से हमेशा फोन करते हैं इस कार्यक्रम में, तो आपकी जो आवाज है वो उनसे मिलती जुलती थी, तो हम माफ कीजिएगा। नितेश जी कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं नितेश जी आप?
1: जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: क्या पढ़ रहे हैं?
1: अभी 9th में कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया है।
0: अच्छा, 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में पढ़ रहे हैं आप?
1: जी जी अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया, पढ़ाई करेंगे। और आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, आपके
0: कौन
1: कार्यक्रम से बहुत। जी
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: यूट्यूब, आपकी पसंद, बोलते नगमे, पहेल, गृहलक्ष्मी, नमस्कार प्रयागराज।
2: तो नितेश जी ये बताइए, आपके घर में और कौन कौन है?
1: हमारे घर में सभी लोग हैं।
2: सभी लोग में कौन कौन? माता पिता, भाई बहन?
1: जी जी सारे लोग हैं। प्रीति जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है।
2: अच्छा, थैंक यू। और देखिए, आपने हमसे बात की और हमें ये पता चला कि आप 9th के स्टूडेंट हैं और अभी आपने ब्रेक लिया है, तो ये ब्रेक क्यों लिया है आपने? क्या हम ये हमसे साझा करेंगे आप?
1: जी नहीं, ऐसे लिया, फिर हम अभी पढ़ाई करेंगे कुछ दिनों में शुरू फिर से।
2: बिल्कुल, देखिए जब जब आप किशोर अवस्था में होते हैं, जब आप 9th 10th में होते हैं, तो पढ़ाई की जो महत्ता है ना, वो सब चीज़ों से ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में जो हमारा सारा फोकस, सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाई पे जो हमारा फोकस है, उससे खुद को नहीं हटाना चाहिए ना।
1: जी
2: अब हम आपसे ये जान लेते हैं कि आप किस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कौन कौन फिल्में हैं
2: आज? है ड्रीम गर्ल 2 और डंकी।
1: सिंगल 2 फिल्म का कोई भी?
2: कोई भी। अच्छा ठीक है, ड्रीम गर्ल 2 का ये प्यारा सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और आप खूब पढ़ाई करें और आपके उज्जवल भविष्य के ढेर सारी विशेष के साथ हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: तो प्रीति जी, देखिए अब तक हमारे जितने भी लिसनर्स इस प्रोग्राम से जुड़े हैं सभी ने लगभग लगभग ड्रीम गर्ल 2 फिल्म के गाने को सुनने की फरमाइश की है। हमारे सिर्फ एक ही श्रोता थे जिन्होंने डंकी फिल्म का गीत सुनना चाहा था, तो अपने सभी श्रोताओं को हम बता दें कि भाई आज हमने 2 फिल्मों के गीतों को शामिल किया है, ड्रीम गर्ल 2 और डंकी। और डंकी फिल्म के गीत भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहे हैं और आपकी फरमाइश पर प्ले होने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं जो हमारे अगले श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं वो फिल्म डंकी का गीत सुनने की ही फरमाइश करें। तो हेलो हेलो,
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलराहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर भोजपुर, बाबा घुसन नाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं। मैडम
0: क्या बात है भाई, एक लंबा चौड़ा सा आपने अपना एड्रेस बताया है। प्रभाकर जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हम आपका।
1: हाँ मैडम जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है
0: जी, शुक्रिया। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: इतना एड्रेस इसलिए बताते हैं ताकि आसपास के लोग जाने के कार्यक्रम में फोन लगा था। मैडम जल्दी फोन तो लगता नहीं
0: जी देखिए प्रयास अगर आप करेंगे तो जरूर फोन लगेगा।
2: वैसे प्रभाकर जी ये बात सही है कि बहुत लोग ट्राई कर रहे होते हैं और उसमें से कुछ लकी लोग होते हैं जिनका फोन लग जाता है, तो वाकई में आप
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम जी।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप रेडियो पर?
1: सब सुनते हैं मैडम जी, हेलो फरमाइश वगैरह सब सुनते हैं, प्रोग्राम आते हैं हमारे यहाँ चलता रहता है।
2: प्रभाकर जी आप क्या करते हैं?
1: खेती करते हैं मैडम जी, घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
2: अरे वाह, देखिए जब हम अपने किसान भाइयों से बात करते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत बढ़ जाती है और हमें पता है कि जब वो खेतों में काम कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में तो वो किसी जवान से कम नहीं है, है ना दीदी?
0: बिल्कुल
2: तो हम आपके लिए बहुत थैंकफुल हैं, सभी रहते हैं, लेकिन आज ये अवसर मिल गया तो मैंने आपसे कह दी ये बात और बहुत अच्छा लगा जी कि आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में अपनी खेती बाड़ी के काम के बीच हमसे बात करने के लिए समय निकाला।
0: तो प्रभाकर जी ये बताइए आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी डंकी का सुना दीजिए, कोई भी गीत।
0: अरे वाह भाई, हमने अपने श्रोताओं से गुजारिश भी की थी कि जी डंकी फिल्म का गीत जरूर सुने, तो देखिए आपने डंकी फिल्म की गीत की फरमाइश कर दी है।
2: और देखिए ये बात तो निखत जी, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने श्रोताओं से गुजारिश की और उन्होंने इसे मान भी लिया।
0: बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं
2: जी।
0: तो प्रभाकर जी चलिए आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत आप तक हम भेज रहे हैं, आनंद लीजिए इस गीत का। नमस्कार।

0: और हेलो की लक्ष्मी में अब हम जुड़ रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से और हमारे जिन श्रोता ने फोन किया। हेलो
1: दीप्ति जी और दोनों दीदियों को नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: नमस्कार।
2: हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: मैं गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा
2: हूं। ओहो धीरज जी, हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं धीरज जी?
1: धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ और आप सभी अच्छे होंगे, आकाशवाणी प्रयाग परिवार और गुरुलक्ष्मी टीम और पनघर की टीम।
2: जी जी बिल्कुल। तो धीरज जी बताइए, वहाँ का गुजरात का जो मौसम है वो कैसा है? हमारे यहाँ तो भाई बारिश हो रही है, आपके यहाँ हो रही है कि नहीं?
1: नहीं, अभी धूप है थोड़ी और बादल थोड़े छाए हैं।
2: जी जी,
1: बारिश रुकी है अहमदाबाद में, दक्षिण गुजरात सूरत में बारिश है यानी रुकी है। अभी थोड़ी राहत की सांस वो लोगों ने ली क्योंकि ज्यादा बारिश हो गई थी वहाँ।
2: जी जी,
1: जल भराव भी हो गया, लेकिन अभी थोड़ा फिलहाल अच्छा है, यानी मौसम थोड़ा धूप खिला है तो थोड़ी राहत है।
0: धीरज जी आप क्या क्या काम करते हैं?
1: मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और आकाशवाणी से मैं जब 17 साल का था तब से सुन रहा हूँ। आज 57 साल हुए मेरे को और आकाशवाणी में मुझे पहले से लगा हुआ है ना, अभी भी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए हमारे आकाशवाणी प्रयागराज की कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन पाते हैं?
1: गुरु लक्ष्मी और पनगट। अच्छा। बहनों का कार्यक्रम है और युवाणी कभी कभार सुनता हूँ।
0: जी जी।
1: और जो फरमाइश कार्यक्रम है मधु कुमार जी जो पेश करती है वो भी सुनता हूँ। ज्यादातर आप लोगों की पेशकश है बहुत अच्छी होती है, खाने पीने की बात की हो या कोई और कार्यक्रम जो आता है ना, नेहा जी और तनु जी पेश करती है और आप लोग जो अच्छी अच्छी कार्यक्रम के शुरुआत में बात करते हैं तो बहुत अच्छी बातें होती है। बहनों के साथ भाई भी उसका रसपान करते हैं कार्यक्रम के साथ।
0: बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम हमारे सभी श्रोताओं के लिए होता है, ऐसा हमारा प्रयास होता है कि जो भी हम चर्चा करें या जो भी विषय जिस पर भी बात करें वो सभी के लिए उतना ही सार्थक हो।
2: तो धीरज जी बताएं इस कार्यक्रम में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: डंकी फिल्म का गाना सुनना है, ओ माहिरे।
2: जी डंकी फिल्म और... जी
1: ओ माहिरे गाना है ना।
0: जी, जी, जी,
2: जी। तो ये गीत
1: और...
2: जी बताएं,
1: हमारे श्रोता गण जी जिन्होंने फोन किया उनको डेलीगेट है, आप दोनों को, पूरी गुरु लक्ष्मी टीम को और हमारा आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप है दीदी,
0: जी
1: जी, सभी को ये गाना डेलीगेट रहेगा।
2: तो धीरज जी, गुजरात में आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत, आनंद लीजिए इस गीत का और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।

0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं हेलो गृहलक्ष्मी, और आज की दो फिल्में हैं ड्रीम गर्ल 2 और डंकी। और अब नेक्स्ट कॉलर जो हमसे जुड़ रहे हैं उनके उनसे हम बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम से।
0: अच्छा, कौशाम्बी से आप बात।
2: तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हम आपका।
1: जी जी मैम जी।
2: जी वीरेंद्र जी, क्या आपका पहली बार फोन लगा इस कार्यक्रम में?
1: पहली बार नहीं लगा मेरा, 2-3-4 बार हो गया।
2: जी बहुत अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि आप और भी आगे कार्यक्रम जब हमारा हेलो लक्ष्मी आए तो उससे भी आप जुड़े।
1: कि मैं नेत्रहीन हूँ।
2: जी जी, तो वीरेंद्र जी ये बताइए कि रेडियो आपके जीवन में क्या महत्व रखता है?
1: रेडियो अच्छी अच्छी बातें बताता है, ज्ञान की बातें बताता है, रेडियो हमें सुनना अच्छा लगता है।
2: जी, तो रेडियो पर जो जानकारी आपको मिलती है वो कितनी फायदेमंद होती है आपके लिए?
1: वो हमारी जानकारी बहुत फायदेमंद होती है।
2: जी
1: बहुत
2: जी
1: अच्छा लगता है, NCERT कार्यक्रम अच्छा लगता है।
2: जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आकाशवाणी प्रयागराज आपको जानकारी से भरपूर कार्यक्रम भी देता है और साथ ही मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। तो वीरेंद्र जी बताएं, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप तक पहुँचाया जाए?
1: कौन सी फिल्म है मैम जी?
2: जी आज हमने इस फिल्म में, इस प्रोग्राम में दो फिल्मों के गीतों को शामिल किया है, फिल्म ड्रीम गर्ल 2 और डंकी। तो इन दो फिल्मों में से कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: का आपने बताया डंकी का कोई सी गाना,
2: डंकी फिल्म का कोई भी गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: तो डंकी फिल्म का
1: बताना चाहता हूँ।
2: जी जी
0: बताएं।
1: आप शायरी का कार्यक्रम शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: चलिए, आपका ये सजेशन हमने नोट कर लिया है और हम अपने प्रोग्राम हटते की बात ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये गीत आपको सुनवा देते हैं। इसकी फरमाइश असम से हितेंद्र जी ने, बक्सर बिहार से फातिमा जी ने और मुरादाबाद से मुकेश कश्यप लक्ष्य जी ने भी की थी। तो चलिए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे सवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुनें, ये गीत, ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो चलते चलते आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में सहयोग रहा हमारी टेक्निकल टीम के अलावा उद्घोषक अतुल यादव का, और इस प्रोग्राम को आज आपके लिए लेकर आई थी मैं निकहत,
1: और निकहत के साथ मैं थी प्रीति। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपसे जो हमने बातचीत की, जैसा निकहत जी कह रही हैं कि वो याद बनकर हमारे दिलों में रह गई है, और अगले कार्यक्रम तक हम इस याद को समेटे रहेंगे और अगले कार्यक्रम में मिलेंगे अपने कुछ और श्रोताओं के साथ।
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting many areas. A report.
1: The southwest monsoon continues to remain active in Himachal Pradesh, with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. Pachad in Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 mm since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
0: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on a two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
4: And, we've always had a good close relationship with India, in playing hockey and, the early Indian teams that came here 100 years ago.
3: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और

0: न्यूजीलैंड के बीच मित्रता विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है मंजू मीना आकाशवाणी समाचार ऑकलैंड न्यूजीलैंड
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध आतंकवाद यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
3: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.

0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है ये पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

0: विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के

0: काष्ठ से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए, इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
0: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्यपुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था।

0: समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
1: सिकंदर
2: बढ़े चलो बढ़े।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
4: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दुष्टों को, भाग नहीं पाए, पकड़ो, पकड़ो नहीं।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो,
7: धन्य हो,
6: धन्य हो।
8: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।

इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स। इसके अलावा प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे अब आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे, नन्ही दुनिया।

0: और आज आपके साथ हैं आपकी दो दीदियाँ, मैं हूँ प्रीति
1: और मैं निकहत दीदी।
0: तो वैसे कैसे हैं हमारे नन्हे मुन्ने साथी, कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई लिखाई?
1: बढ़िया दीदी, नन्हे मुन्ने साथी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि भाई देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे जो है वो समझदार नहीं है, बारिश में भीगते होंगे या फिर स्कूल जा रहे हैं तो वो अपने साथ रेनकोट, छाता, ये सारी चीजें लेके नहीं जा रहे होंगे। हमारे नन्हे मुन्ने साथी बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, वो जब भी बाहर जाते होंगे तो इन सारी चीजों को अपने साथ लेकर जाते होंगे। बच्चों, जब आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी सावधानी रखेंगे ना, तभी आप इस बारिश के मौसम को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, है ना दीदी?
0: क्योंकि देखिए दीदी, जब बारिश आती है तो जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी है ना, वो खुद को भीगने से नहीं रोक पाते हैं।
1: हाँ।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो समझदार हो गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी बता दिया कि वो सब कुछ लेके चल रहे होंगे।
1: हाँ।
0: स्कूल जाएंगे तो भाई वाटरप्रूफ बैग ले जाएंगे, हाँ। रेनकोट, छाता सब ले जाएंगे, है ना?
1: बिल्कुल
0: दीदी, तो आपकी आज पूरी वकालत कर रही है।
1: क्योंकि भाई देखिए, हमें जो पता है कि हमारे नन्हे साथी जो है ना समझदार हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, है ना। तो दीदी एक भाई, आप थोड़ा सा हम अपना बातों का जो वो है ना टॉपिक, थोड़ा सा बदलते हैं, इसलिए
0: दीदी सुनिए, आप टॉपिक बदले, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज जब मैं अभी आकाशवाणी आ रही थी, तो आप तो आई नहीं थी, तो मुझे लग गई थी भूख। मैंने कहा कब दीदी आए और हमें कुछ मिठाई विठाई खिला दे।
1: अच्छा,
0: तो मैं चली गई मिठाई की शॉप पे।
1: हाँ?
0: वहाँ मैंने क्या देखा?
1: क्या
0: क्या देखा? मैंने देखा मिठाइयाँ आपस में झगड़ा कर रही हैं।
1: अच्छा, हाँ, वो झगड़ा कर रही हैं।
0: अरे आपको विश्वास नहीं होता?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा।
0: अरे भाई, हम बोल देते हैं, आपको सुनवा देते हैं मिठाइयों का झगड़ा।
1: अच्छा चलो ठीक है, तो फिर सुनवाओ,
0: हमारे श्रोता भी सुनेंगे।
2: रात हो चुकी है, मिठाई की दुकान बंद है, सभी मिठाइयाँ आराम कर रही हैं, लेकिन जलेबी और रसगुल्ले के बीच फिर बहस छिड़ जाती है। ओहो रसगुल्ले महाराज, जरा संभल कर बैठो, तुम्हारी तोन तो बढ़ती ही जा रही है, कहीं पूरी थाली पर कब्जा ना कर लो।
3: कम से कम मैं गोल और सुंदर तो हूँ, तुम्हारी शक्ल देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी ने मोबाइल का चार्जर उलझाकर प्लेट में रख दिया हो।
2: चार्जर ही सही, क्योंकि मैं लोगों को चार्ज भी कर

0: देती हूँ, तुम्हें खाकर तो लोग बस पानी ही ढूंढते फिरते हैं।
1: अरे अरे, लोग मुझे प्यासे खाते हैं, तुम्हें खाने से पहले तो समझना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें।
0: और तुम्हें खाते समय डर लगता है कि कहीं दबाते ही रस का फव्वारा ना निकल जाए।
1: कम से कम मैं समझदार हूँ, तुम तो इतनी चिपचिपी हो कि जो तुम्हें एक बार छू ले वो 5 मिनट तक हाथ चाटता रहता है।
0: यही तो मेरी खासियत है, लोग अपनी उंगलियां तक चाटते रहते हैं।
1: उंगलियां चाटते हैं या तुम्हें हटाने की कोशिश करते हैं?
0: सुनो रसगुल्ला, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी लोकप्रियता से जलन होती है?
1: मुझे जलन? मैं तो चाशनी में रहता हूँ, जलन का समय ही कहाँ मिलता है।
0: फिर हर बार मेरे सामने अपनी गोलाई का प्रदर्शन क्यों करते हो?
1: क्योंकि मेरे पास दिखाने लायक गोलाई है, तुम्हारे पास तो बस घुमाओ ही घुमाओ है।
0: घुमाओ नहीं, कला कहते हैं इसे। मैं मिठाइयों की पेंटिंग हूँ।
1: और मैं मिठाइयों का चांद हूँ।
0: चांद, तुम तो पूरे ग्रहण जैसे लगते हो।
1: और तुम तो ट्रैफिक जाम जैसी दिखती हो, किधर से शुरू हो किधर खत्म किसी को कुछ नहीं पता।
0: अरे भाई, हम दोनों रोज यही करते हैं, कभी अपनी अच्छाइयाँ भी गिनाएं। हाँ देखो भाई, मेरी अच्छाइयाँ गिनाने बैठूँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी।
1: और मेरी अच्छाइयाँ सुनाने लगूँ ना तो चाशनी खत्म हो जाएगी।
0: वाह, आत्मविश्वास तो कूट कूट कर भरा है हम दोनों में। गुलाब जामुन, चलो एक सवाल का जवाब बताओ। अगर दुकान में सिर्फ एक मिठाई रखने की जगह हो तो किसे रखा जाएगा?
1: अरे मुझे, क्योंकि मैं शालीन, मुलायम और सबका प्रिय हूँ।
0: और ग्राहक आते ही पूछेंगे, भाई साहब जलेबी कहाँ गई? फिर वो पूछेंगे, रसगुल्ला भी देना, मतलब मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा।
1: और मेरे बिना भी नहीं चलेगा, अरे हम तो फिर से लड़ने लगे।
0: मैं नहीं, गोल मटोल महाराज तुम शुरू हुए थे पहले।
1: झूठ, गोल गोल बवंडर पहले तुम चिढ़ाने लगी थी।
0: सच तो ये है कि ग्राहक हम दोनों को बराबर प्यार करते हैं। एक कुरकुरी है तो दूसरा रसदार, दोनों की अपनी पहचान है, मतलब मैं खास हूँ।
1: और मैं भी,
0: बिल्कुल
1: दोनों
0: ही
1: खास
0: हैं। अच्छा रसगुल्ले, आज के लिए युद्ध विराम।
1: मंजूर, लेकिन कल फिर बहस होगी।
0: क्योंकि बहस ना हो तो मिठाइयों की दुनिया थोड़ी
1: फीकी
0: लगती है।
2: तो नन्हे साथियों, कैसी लगी ये मिठाइयों की नोकझोंक? स्वर तो आप पहचान ही लिए होंगे। जी हाँ, हमारी प्यारी निखत दीदी और प्यारी सी संगीता दीदी। तो दोनों दीदियों को हम ये बताएंगे कि आप लोगों की ये मिठाई की नोकझोंक ना बड़ी मीठी मीठी, बड़ी प्यारी प्यारी थी
3: और मजेदार नहीं लगी?
2: बहुत मजेदार। वैसे दीदी, हाँ? सच बात तो ये है कि ये दोनों कहूँ तो हिट मिठाइयाँ हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को पसंद
2: हो, हर किसी को पसंद हो। और जानती है, जो हम लोग के सैटरडे संडे जो छुट्टी वाले दिन होते हैं, वहाँ तो सुबह की शुरुआत ही जलेबी से होती
3: है।
2: और मेहमान आए और घर में रसगुल्ला ना आए, ये भी संभव नहीं।
3: बिल्कुल, तो दोनों ही जो मिठाइयाँ हैं दीदी, सबकी फेवरेट हैं,
2: सबकी फेवरेट।
3: तो भाई, नोकझोंक तो होती ही रहती है, तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो दोनों मिठाइयाँ हैं वो आपस में सहेली भी हैं, जैसे कि हमने बता दिया, दोनों की जो झगड़े थे ना वो सॉल्व हो गए थे,
2: सॉल्व हो गए थे। और देखिए, चाहे झगड़े कैसे भी हो, जब हम दोस्त हैं, जब हम फैमिली में हैं, तो थोड़ी बहुत तकरार नोकझोंक तो चलती रहती है, पर इन्हें सुलझा लेना चाहिए, इन्हें मन में नहीं रखना है।
3: हाँ, जैसे कि जलेबी और रसगुल्ला ने भी तो सुलझाया ना अपना झगड़ा।
2: बिल्कुल। और जब आप, जब थोड़े समय बाद जब आप इनको याद करेंगे ना, इस तकरार को, इस मीठे मीठे नोकझोंक को, तो बड़े अच्छे लगते हैं ना। तो जो हमारे नन्हे साथी, जो भी बहुत छोटे से हैं हाँ। तो जब आपके दोस्तों के बीच में, भाई बहनों में जो नोकझोंक होगी ना, उसे जब आप बड़े होकर याद करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है।
3: और दीदी,

0: देखिए ना, अब बातें करते करते समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला,
1: जी
0: और अब वक्त हो गया है अपने नन्हे साथियों से विदा लेने का। तो अगले नन्ही दुनिया कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों,
1: जय हिंद।

अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रही थी नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सके, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
2: जी।
3: तो इसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत

0: सारी चीज़ ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी ज़रूरत नहीं हो, और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज़ को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
0: बिल्कुल
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
0: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, और कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में है, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भाग

0: लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वॉन्ट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है। तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं। उस भड़ास को दबाने के लिए किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पर निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम्हारी, तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर।
1: जी
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोग लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ। उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं। तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग

0: जी पबजी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है। तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर जो एलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: So, आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका

0: जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते।
0: हाँ, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ अगर, अगेन, 33 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीज़ें या 55 चीज़ें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रॉसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इंपल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता है ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया x से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी ये जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो, वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं।

0: बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस। क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल। तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके, अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: Yes.
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है। चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो इन्वायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए. ई इन्वायरमेंट एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस. तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए. तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पर फोकस करे कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके. सेम चीज़ अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है. तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं.
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डी क्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं
0: बिल्कुल
1: कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं. तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में.
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते. या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है. इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है. किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इंप्रूव करें. जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा. किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा. किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की. तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा. तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है. जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है. जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बींग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है. तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं. तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है.
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है. तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स. तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए. लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे. वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं. तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे. और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया. तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहाँ 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, IAS, IPS, MLA, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा. तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज. तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा. और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी. तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए. तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है. तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की

0: कोशिश कर रहा है जहाँ पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुँचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में युवाणी कार्यक्रम।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से युवाणी कार्यक्रम।

हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूथ प्रोग्राम युववाणी में और मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। दोस्तों, शाम का समय है, दिन भर की भागदौड़ के बाद शायद आप भी थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मानिए ना मानिए, एक चीज़ जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन है लगभग हर युवा के जीवन में, हर एज ग्रुप के जीवन में, वो है टेंशन। कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी नौकरी पाने की टेंशन, कभी खुद को प्रूव करने की, और कभी इस बात की कि बाकी सब तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। और फिर क्या होता है, शाम को दोस्तों के साथ महफिल जमती है, बातें शुरू होती हैं, किसी का पेपर ख़राब गया है, किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और किसी का रिज़ल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, और फिर माहौल हल्का करने के लिए कोई मजाक करता है, भाई ज़िंदगी को इतना सीरियसली मत लो यार, थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया करो, टेंशन लेने से क्या होगा। बात सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है और होनी भी चाहिए, हर किसी को स्ट्रेस से बाहर आने का रास्ता चाहिए, हर किसी को किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए चुना गया रास्ता गलत हो, कई बार क्यूरियोसिटी में, कई बार पीयर प्रेशर में, और कई बार सब कर रहे हैं सोचकर, और कई बार सिर्फ एक बार ट्राई करना के लिए। कुछ लोग ऐसी चीज़ें की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि कितने सीरियसली उसके कॉन्सिक्वेंस हम लोग को फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स अक्सर बड़े दरवाजे से नहीं आती, वो धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट्स की खिड़कियों से अंदर आती हैं, और जब तक हम उन्हें पहचानते हैं तब तक वो हमारी हेल्थ, हमारी स्टडीज़, हमारे रिलेशंस, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और कई बार हमारे ड्रीम्स तक को अफेक्ट करने लगती हैं। तो आज के युववाणी में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो केवल हेल्थ का इशू नहीं है बल्कि अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सही डिसीजंस लेने से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी है, और वो है नशे की लत और उससे बचाव। दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत में एक छोटा सा सवाल करते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे इसकी विल पावर कमज़ोर होगी, इसने खुद ही अपनी लाइफ ख़राब कर ली है। लेकिन क्या नशे की लत केवल विल पावर की कमी का नाम है या इसके पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले ये

समझना ज़रूरी है कि नशा केवल एक बैड हैबिट नहीं है, बल्कि कई मामलों में एक सीरियस फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत के राष्ट्रीय ड्रग निर्भरता उपचार केंद्र यानी कि NDDTC एम्स के अनुसार, नशीले पदार्थ मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करते हैं जो प्लेजर, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर युवा नशे की ओर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? दोस्तों, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ज़्यादातर लोग नशे की शुरुआत एडिक्ट बनने के लिए नहीं करते हैं। कोई स्ट्रेस से बचना चाहता है, कोई लोनलीनेस से दूर होना चाहता है, कोई दोस्तों में एक्सेप्टेंस चाहता है, कोई क्यूरियोसिटी में कोशिश करता है और कई फिल्मों में या सोशल मीडिया में दिखाई गई कूल इमेज से इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब खुद ही सोचकर देखिए, कोई नया नया कॉलेज का बच्चा है, वो नए शहर में जा रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, उनको जानने की कोशिश कर रहा है, तभी कोई कहता है कि इतना भी क्या सोच रहे हो, बस एक बार ट्राई कर लो। अब दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वो कूल इमेज मेंटेन करने के लिए उसमें फिट इन हो जाइए, या अपने डिसीजंस और प्रिंसिपल्स हैं उस पर टिके रहिए। और यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। ये जो नशीले पदार्थों में निकोटिन होता है ना, वो बहुत जल्दी हमारे डोपामाइन को बूस्ट कर देता है, वो भी टेम्पररी, उससे हमारा मूड चेंज हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो उससे नंब हो जाते हैं और बाद में क्रेविंग और बढ़ जाती है उसको लेके। कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं करता बट नुकसान ही करता है। और पीयर प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें कोई सीधे फोर्स नहीं कर रहा होता है, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि मना करना मुश्किल हो जाता है। यार तुम बहुत सीधे हो, एक बार से क्या हो जाएगा, हम भी तो ट्राई कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर कई लोग केवल ग्रुप में फिट होने के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब भीड़ के साथ चलना नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर भीड़ के खिलाफ सही डिसीजन लेना है। हम अक्सर सोचते हैं कि नुकसान केवल लंग्स, हार्ट या लिवर को ही होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। धीरे धीरे पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम होने लगता है, मेमोरी इफेक्ट होती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, इरिटेशन बढ़ने लगती है और हम लोग फैमिली और फ्रेंड्स से दूरी बढ़ाने लगते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी डेवलप होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हैं वो अपने गोल्स से भटकने लगते हैं। दोस्तों, ये तो सच है कि आज का युवा चैलेंजेस से घिरा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, करियर की अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक प्रेशर है, रिलेशनशिप्स, मेंटल स्ट्रेस, इन सब को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इनसे निपटने के लिए हेल्दी तरीके ज़रूर चुने जा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे कि अपने मन की बात ना आप किसी से शेयर कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम से ज़्यादा उसका अकेले बर्डन उठाना हमें परेशान करता है। या किसी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। हॉबीज इज़ नॉट ओनली द वे ऑफ पासिंग टाइम, वो आपकी स्ट्रेस को भी कम कर सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना सकते हैं, क्योंकि नॉट एवरी पिक्चर इज़ परफेक्ट। सक्सेस से इंस्पायर होइए, मगर कॉन्स्टेंट कंपेरिजन इज़ नॉट गुड। दोस्तों, आपकी उम्र एक्सपेरिमेंट्स करने की है, लेकिन अपने फ्यूचर के साथ नहीं। याद रखिए, टेम्प्ररी रिलीफ देने वाली चीज़ें हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सही कंपनी, पॉजिटिव थिंकिंग और सही डिसीजंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ भर आपका साथ देती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा चर्चा सेगमेंट। अब आपको पता है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और अब युवाणी में अब समय हो गया है हमारे प्रेरणापुंज सेगमेंट का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों की जिन्होंने अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने जीवन से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा भारतीय युवा कौन था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयां दी, तो शायद सबसे पहले नाम आएगा स्वामी विवेकानंद जी का, और यही हैं आज के हमारे प्रेरणापुंज। लेकिन उनका जीवन केवल एक सन्यासी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने सवाल पूछे, उत्तर खोजे, पूरे भारत को करीब से देखा और फिर दुनिया को भारत की असली पहचान से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। बचपन से ही नरेंद्रनाथ में जिज्ञासा, तर्क करने की क्षमता और सीखने की गहरी इच्छा थी। उन्हें संगीत पसंद था, वो व्यायाम करते थे, तैराकी और कुश्ती में भी रुचि रखते थे, और साथ ही साथ भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषदों के साथ साथ पश्चिमी दर्शन और इतिहास का भी गंभीर अध्ययन करते थे।

यानी वो केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से भी बेहद समृद्ध व्यक्तित्व थे। युवावस्था में उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि क्या किसी ने वास्तव में ईश्वर को देखा है। इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिला और यही मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। गुरु के महाप्रयाण के बाद उन्होंने 1888 से 1893 तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा में उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता को करीब से देखा। तभी उन्होंने समझा कि भारत के उत्थान का आधार शिक्षा, आत्मविश्वास और युवा शक्ति है। इसके बाद 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में उनका शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन गए। उन्होंने विश्व को सहिष्णुता, मानवता और सभी धर्मों के सम्मान का संदेश दिया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्य और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद केवल महान वक्ता नहीं बल्कि ऐसे विचारक थे जिनकी बातें आज भी युवाओं का मार्गदर्शन करती हैं। वो कहते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। उनका संदेश बहुत ही फेमस था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो कहते थे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इसके अलावा हम उनके प्रैक्टिकल वेदांत के बारे में भी पढ़ते हैं, कई बुक्स उन्होंने लिखी हैं, हम उसके बारे में भी जानते हैं। और इसी के साथ ही साथ वो मानते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उनका मानना था हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और हमें उनकी सर्विस करनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। तो श्रोताओं, आज प्रेरणापुंज से हम उनके जीवन का एक संदेश अपने साथ लेकर चलें कि खुद पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना के साथ समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करिए। ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट। और एक सेगमेंट होता है हमारे प्रोग्राम में दोस्तों, जो अक्सर जो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, खेल प्रेमियों के लिए वो बहुत स्पेशल होता है, और वो है हमारा खेल जगत सेगमेंट। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वो गिरते हैं, संभलते हैं और फिर ऐसी वापसी करते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। आज खेल जगत में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही युवा खिलाड़ी की जिसने अपने धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी नायिका हैं भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर। दोस्तों, इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। हरियाणा में वैसे भी खेल प्रतिभाओं को धरती माना जाता है, लेकिन मनु की कहानी थोड़ी अलग है। बचपन से ही वो बेहद ऊर्जावान थीं, जिज्ञासु थीं, और बच्चों में जो अलग अलग गेम्स खेलते रहते थे या हो सकता है कई एक एक्टिविटी तक सीमित थे, उन्होंने बॉक्सिंग भी खेली, स्केटिंग भी, टेनिस भी और मार्शल आर्ट्स भी। कई खेलों में उनकी रुचि थी। जब उन्होंने शूटिंग शुरू की तब उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनकी एकाग्रता और सीखने की गति जल्द ही सबका ध्यान खींचने लगी। शूटिंग एक ऐसा खेल है दोस्तों जिसमें सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक संतुलन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत प्रभावित करती है। ऐसे खेल में सफल होना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, साल 2018 उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर आया। उस वर्ष उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और लोगों ने पहली बार उनको इतने बड़े मंच पर देखा और उन्होंने जान लिया कि हमको नया सितारा मिल गया है। इसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पदक जीतकर लगातार अपनी प्रतिभा भी साबित की। लेकिन सफलता की कहानी में संघर्ष भी होता है। साल 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने देश की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हाई कर दी, लेकिन तकनीकी समस्या और अन्य चुनौतियों के कारण उनका प्रदर्शन उम्मीदों के हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ऐसे ये कंसिडर किया कि ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हमें कहीं ना कहीं उनका जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है कि वो कोई भी हार को पॉजिटिवली लेके चलती हैं और कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखती हैं। उनका कमबैक हुआ साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया। टोक्यो

निराशा से लेकर पेरिस की सफलता तक का सफर ये साबित करता है कि असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर फिर उठ खड़ा हो। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या अपने जीवन के किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मनु भाकर की ये यात्रा से आप ज़रूर प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आज के प्रोग्राम में हम इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ही दिए जा रहे हैं, गाने नहीं हो रहे, बट चिंता मत करिए, आपको बाय बाय करने से पहले ये गीत आपके लिए है।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम Q&A सेशन लेके आते हैं रोज आपके लिए। कल का हमारा क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, और इसका आंसर है अनुच्छेद 85। और आज का हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे। आप अपने आंसर्स हमको हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर भेज सकते हैं, और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर, इसी नंबर पर और इसी ईमेल आईडी पर आप आज के प्रोग्राम का रिव्यू भी हमें भेज सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, मिलेंगे फिर आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026

0: हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे

0: स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ आप हमारे प्रसारण आकाशवाणी के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा। 10:00 माला तनखा का लिखा नाटक सुनवाया जाएगा पहचान। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में हम आपको सुनवाएंगे अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई मोहनलाल जायसवाल और साथी के गाए लोकगीत के अलावा एक बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा हमारे गांव, उनकी ऐतिहासिक खाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी। इस विषय पर सुभाष यादव से अभिनव प्रज्ञ पांडे ने बातचीत की है। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में। सात बजकर 31 मिनट पर संस्कृत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता उपमा कालिदासस्य। 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में संगीता भारद्वाज के स्वर में गीत और भजन सुनवाया जाएगा। 8:00 चित्रपट संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर संस्कृति भारती और 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:05 पर रोज की तरह सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में 6:30 पर आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सीवी रमन के विचार। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम सुबह 6:35 पर प्रसारित होता है। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वनाथ से की गई बातचीत सुनाई जाएगी। बातचीत का विषय होगा बाग लगाते समय सावधानियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:45 पर लेकर हम हाजिर होगी। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता होगी हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर पामिला नंदी और शाम 7:45 पर चित्रा चौरसिया के स्वर में भजन और गीत का आनंद लीजिएगा। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7:00 सुनवाया जाएगा और 7:10 पर हम हाजिर होंगे फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाओं के साथ। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर रामशंकर का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी पूनम तिवारी की वार्ता। वार्ता के विषय होगा महिलाओं में डिजिटल साक्षरता। इसके अलावा वंदना सरोज और साथियों के गाए लोकगीत भी इसी प्रोग्राम के तहत प्रसारित किए जाएंगे। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमाधुरी सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे, जिसमें कलाकार होंगे विकास श्रीवास्तव। इसके अलावा दिन में 2:30 पर भी लोकगीतों का आनंद लिया जा सकेगा। कलाकार होंगे जंग बहादुर यादव और साथी। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम, जो कि लोकगीतों पर आधारित

होता है। कल के इस कार्यक्रम में राजवंत सिंह पटेल और साथी के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता रितिशा ओझा की वार्ता सुनेंगे, जिसका विषय होगा जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इसके अलावा जूही चावला पर केंद्रित आज की शाम आपके नाम कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कल शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम में गुलाब सिंह यादव और साथी के गए लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे दांतों की आम समस्या एवं उनकी समुचित देखभाल विषय पर डॉक्टर रंजना वाजपेयी से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। शाम 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्यनारायण सिंह की वार्ता होगी, विषय होगा विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारी शेष और कल की मुख्य कार्यक्रमों की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हम आपको खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में कुछ जानकारियां दे रहे हैं। श्रीमती निर्मला देवी, पत्नी भुवर आदिवासी, खीरी प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी बेटी सीता, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, ये दिनांक 22 मई 2026 से खीरी से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, श्रीमती निर्मला देवी, पत्नी भुवर आदिवासी, खीरी प्रयागराज। एक अन्य सूचना, मोहम्मद सरोज पुत्र मोहम्मद शफीक, थाना कोराओं जनपद प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी पत्नी तेहरा बानू, जिनकी उम्र है 35 वर्ष, ये दिनांक 15 अप्रैल 2026 से कुरांफ से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, मोहम्मद सिराज पत्नी, क्षमा कीजिए इसे फिर सुन लीजिए, मोहम्मद सिराज पुत्र मोहम्मद शफीक, थाना कुराऊं जनपद प्रयागराज। एक अन्य सूचना, अनीता साहू पत्नी सुशील साहू, खुशहाल पर्वत कल्याणी देवी, थाना तरसुईया प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनके संबंधी सुशील साहू दिनांक 30 मई 2026 से कल्याणी देवी से लापता हो गए हैं। सुशील साहू की उम्र 35 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है, ये जीन्स की पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, अनीता साहू पत्नी सुशील साहू, 118/119 खुशहाल पर्वत कल्याणी देवी, थाना तरसुईया प्रयागराज। और मोबाइल नंबर नोट कर लें, मोबाइल नंबर है 9369484350 यानी 9369484350। अभी आप सुन रहे थे खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं।

श्रोताओं, आकाशवाणी प्रयागराज अपने विविधरंगी कार्यक्रमों के साथ आप तक पहुंचता है ऐप के माध्यम से और रेडियो सेट के जरिए।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम। और हो भैया, का हाल चाल बा? खेती किसानी का होत बा?
0: भोला भैया, देखा जैसन मौसम बनत बाटे, हम तो कहब कि भाई जोन खरीफ का राजा फसल बाटे धान। भाई
1: बिल्कुल।
0: धान की तैयारी में हम सब लगा है, और जैसे खेत भर जाए भाई ओकर रोपाई शुरू हो जाए।
1: बिल्कुल भैया, तू सही कह। देखा महू जो ना कल करे रोपाई।
0: कई लिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा जो ना दाऊ राजा भी एकदम मेहरबान हो गए रहे, बरसेन बढ़िया पानी जो ना खेते में लबा लब रहा, बेहन भी तैयार रही। तो हम कहे ऐसा लगे हाथ जो ना इस काम निपटा ले।
0: काहे नहीं भोला भैया, देखो प्रगतिशील किसान भैया हरे है,
1: बिल्कुल
0: तू सबे
1: बिल्कुल।
0: मेड़ बंदी मेड़ डांडी सब पहले से बनाई के रखा रहा था, तो भाई पानी बरसे मान जैसे बेहन तैयार रहा था वैसे तू
1: बिल्कुल
0: सबे रोपाई कर देता। भाई
1: बिल्कुल।
0: भोला भैया, जो नी बात होता ना कि भाई प्रगतिशील किसान के का कहा जाए, भाई प्रगतिशील किसान वही भैया हरे हैं जे की समय के साथ अपने खेती किसानी का काम करत हैं, और सिर्फ
1: बिल्कुल।
0: समय के साथ नहीं, जोन सही जानकारी बांटे, जोन विशेषज्ञ भैया जोन वैज्ञानिक भैया जानकारी देते हैं तमाम मंचन के माध्यम से, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे वो अन्य गोष्ठी हुई किसान गोष्ठी हुई, या अपने जोन बाप दादा बताई के गवाह हैं तौर तरीका बांटे, उसे सीख के सही जानकारी लेके और सही समय पे जोन किसान भैया काम करे थे, हमने नजर में वही विकासशील किसान भैया हरे हैं, और
1: बिल्कुल
0: वही
1: भैया,
0: सही तरीका बा बूढ़ा भैया अपन खेती किसानी करेगा।
1: बिल्कुल भैया। खेती किसानी देखा का है ना कि मौसम पे आधारित खेती किसानी काम होते, तो अगर समय से काम न कर बया तनिको चूक हुई तो भैया देखा फिर मौसम तो केहू के साथ दे ही ना, वो अपने समय से आई जाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जोन बात ही होता कि भाई जोनों किसान भैया हरे हैं भाई, उनकर जोन समाज में एक योगदान बाटे ओका हम तबे हर दिन याद करी था,
1: बिल्कुल।
0: पर जोन आज दिन बाटे 10 जुलाई के दिन बाटे, और आज के दिना एक विशेष दिवस मनावा जाता नेशनल फिश फार्मर्स डे,
1: बिल्कुल
0: यानी जोन
1: भैया, क्या सही कहा कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भैया कहे का मतलब कि जो आज के दिन है ये जो किसान भैया मछली पालन करते हैं, देखा यह कृषि के एक अंग
0: एक
1: आटे,
0: बिल्कुल बिल्कुल भोला
1: तो ये
0: भैया,
1: ना समझा कि भैया ये मछली पालन तो कोनो खेती किसानी ना आटे, नहीं यह कृषि से जुड़ा कार्य व्यवसाय आटे। आज उनके लिए विशेष समर्पित दिवस है, और ओकरे बारे में देखा ये है कि लोग जो ना है आज के दिन ये विषय से जुड़े और ये काम से ये खेती से ये व्यापार से जो ना है प्रेरणा लें, इनमें भागीदारी दें।
0: जैसे एक चीज आप कहा ना कि ई अलग चीज नहीं बाटे, ई भी खेती किसानी का एक अंग बाटे, ई बहुत बढ़िया बात कहा कि चाहे हम मछली पालन करी, चाहे हम मौन पालन करी, चाहे हम मधुमक्खी पालन करी, कुक्कुट पालन करी, जोन ई तरह के व्यवसाय बाटे ना भोला भैया,
1: बिल्कुल।
0: एक प्रकार से इहो खेती किसानी बाटे भाई, कतौ न कतौ ई भी अपने समाज में अपने आर्थिक जोन स्थिति बाटे भाई, अपने समाज के अपने देश के आर्थिक जोन स्थिति बाटे ओके बेहतर कई रहा है।
1: बिल्कुल।
0: खाली अन्न उगावे खेती किसानी नहीं होता भाई, पशुपालन बहुत भैया करत हैं, बहुत भैया हरे जैसे मछली पालन करत हैं, तो एक तरह से जब ये कोनो दिवस मनावा जाता तो भाई एक तरह से समाज में उनके प्रति लोगन में एक तो जागरूकता बढ़ाई, और वो विशेष करके जैसे हम सभी मनाई थे भाई ये मनावा जाता कि नेशनल फिश फार्मर्स डे, भाई लोगन में भी मछली पालन के लेके एक भावना बढ़ाई, और उससे
1: बिल्कुल
0: ज्यादा से ज्यादा लोग एक प्रति प्रेरित हों, ये
1: बिल्कुल।
0: व्यवसाय के अपनावें, कहे कि देखा खान पान एक अलग विषय बाटे भाई, सब जने अलग अलग तरीके से खान पान होता, बहुत भैया आ रहे हैं जो नाही खाते मगर तबो मछली पालन करते हैं और अच्छा उसे व्यापार कही के अच्छा पैसा कमाई रहा है।
1: बिल्कुल भैया, देखा एका जो ना है आज के दिन मनावे के मुख्य उद्देश्य यह बाटे कि जो उन मत्स्य किसान हैं उनका जो ना सम्मानित किन जाए, और राष्ट्रीय स्तर पे जो ऐसे किसान भैया हैं आज के दिन उनका सम्मान दिन जाते, और लोगन में जागरूकता बढ़ावे खातिर आज के दिन तमाम तरह तरह के छोटा छोटा कार्यक्रम क्षेत्र स्तर पे और राज्य स्तर पे होत रहते।
0: बिल्कुल बिल्कुल भोला
1: तो
0: भैया, और देखा जैसे बहुत किसान भैया आ रहे ऐसा हैं इनके पास भाई बड़ी जोत नहीं बाटे, छोटवार जोत बाटे भाई, जगह का

0: जगह का समस्या हो तो भाई छोट जगह बांटे। अब जब छोट जगह होए तो भैया किसान भाई हरे भी तमाम तरह के अन्य व्यवसाय में अपनावत हिन। बहुत
1: बिल्कुल
0: भैया हरे
1: बिल्कुल
0: कुक्कुट पालन करत हिन, बहुत भैया ले मौन पालन करत हिन, बहुत भैया हरे औषधीय बागवानी करत हिन। तो इस तरह के जोन चीज बांटे निश्चित तौर पर भाई एमन भी आपके एक तरह से भाई आप सही तरीके से जानकारी ले लें, तब एकरे बारे अगर कोनो काम धंधा शुरू करी तो निश्चित तौर पर वो आपके फायदा दे।
1: अब भैया देखा ये जो है हमें मत्स्य पालन में ये है कि जो है सरकार के तरफ से लगभग 40% तक के जो है सब्सिडी मिला थे हमें,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो है 4% के ब्याज दर पे लोनों भी मिल जाते कि अगर उनका व्यवसाय करे के है तो। और अच्छा है, मतलब समझा कि अगर 1 एकड़ तालाब में अगर आप ये जो है मत्स्य पालन करता तो समझा कि कम से कम सालाना 3 से 4 लाख की कमाई कहूँ नहीं बन गई है।
0: बिल्कुल बोला भैया, अच्छा बाजार बाएकर और ना केवल अपने आसपास के क्षेत्र में एकर बाजार बाटे, बल्कि जो नी मत्स्य पालन होता इमन जो आपका भाई उत्पाद होता वो दूर दूर तक देश विदेश हो जाता। अगर अच्छी
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: बिल्कुल
0: गुणवत्ता
1: बिल्कुल
0: का आप मछली पालन करी और उमन अगर अच्छी आपका फसल मिले, फसल का मतलब बाटे अगर उमन अच्छे उत्पाद आपके मिले तो भाई निश्चित तौर पर वो बाहर जाए और भाई आपके एक अच्छा मुनाफा दे के जाए।
1: बिल्कुल
0: तभी
1: बिल्कुल
0: देखे जो नी शब्द इमन प्रयोग किया गवाबा फिश फार्मर्स, यानी वो किसान भैया हरे हैं जो एकर खेती कर रहे हैं, एक
1: बिल्कुल
0: तरह से
1: मछली
0: वो
1: के
0: खेती ही
1: पैदावार।
0: बाटे। तो निश्चित तौर पर भाई जो भी किसान भैया अगर एकर करे चाहते हैं तो भाई एकरे बारे में आप अच्छी जानकारी ले लें, और जानकारी ले के अगर ये काम कर ही भाई अच्छा, अगर आप एमन जो मछली बा अच्छी तरीके से मछली अगर पालन कर ही तो भाई आपके लाभ मिले।
1: और सबसे बड़ी बात भैया देखा है व्यवसाय में ना, कहूँ हमका जो ना है बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं बटे, खुद ही जो ना है ए तरह के जो ना है काम करे भाई लोग आवत ही नाप के तालाब में से मछली मरही खरीद के ले जाइ और अपन बेची, आपके घरे बैठे बैठे सारा काम हो
0: वो
1: जाए के।
0: पहले ही आके देख लेते हैं उनका स्वास्थ्य, देखते हैं भाई जोन दाना डाले के बाटे कबो ऐसा ना हो था कि भाई आपकी जानकारियों देते हैं। आप अगर उनसे संपर्क कहीं तो आपकी जानकारी कब उनका खाना खियावे के बाटे, कौन कौन दवा डाले के बाटे, ये सब आपकी जानकारियों दें।
1: बिल्कुल भैया प्रशिक्षण भी होते, और जैसे कहा मतलब अगर व्यवसाय कर लिया तो ओके लिए जैसे आपके तैयार होगी फसल तो मछली तैयार हो गया तो व्यापारी लोग खुद जो ना ढूंढत रहते,
0: हाँ,
1: कहूँ जाए की
0: बिल्कुल
1: जरूरत नहीं पड़ते, आप घरे बैठे वैसे बस यहीं मछली मरिए ले जाइए आपके पैसा तुरंत नगद देन का मतलब बढ़िया 6 महीना साल भर में एक जो ना आप समझा कि तैयारी दे रहा था
0: बिल्कुल
1: पूरा
0: बिल्कुल भोला भैया। अच्छा
1: तो।
0: भोला भैया इतना बात बत कही भाई हमार पचन का, बतावें कि आज अपने पंचायत घर कार्यक्रम में का बाटे।
1: भैया देखा आज जो ना है लोकगीत में मोहनलाल जैसल और साथी के लोकगीत है, और साथ ही साथ एक देखा बातचीत है हमारे गांव उनकी ऐतिहासिक धाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी ए पे सुभाष यादव से अभिनव प्रग पांडे भैया के बातचीत भा
0: बिल्कुल
1: यह
0: बिल्कुल
1: सुनवाओ। तो मुला हम कहा कि यू ना कुछ संदेश बाटे, पहले पंच भैया ने सुन लें तो फिर आगे के हम बात बात कही करा जाए।
0: बिल्कुल भैया,
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा संदेश तो ही गया। हम कह आवा देखा जो है मोहनलाल जैसल और साथी के लोकगीत है, पंच भैया इनके सुनवाए दे तो फिर बात बात कही होए।

0: भैया
1: देखा भैया इतना बढ़िया रहा मोहनलाल जैसल और साथी के जो है लोग
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
1: और हम कहे भैया जो है कि बातचीत कहात रहे सुनवाबे के
0: हाँ हाँ बताओ
1: वो का जो है सुनवाए दिन जाए का
0: अच्छा का बाटे बताओ
1: भैया। देखा एक बातचीत रही हमारे गांव हमारे गांव उनके ऐतिहासिक धाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी ये पे देखा सुभाष यादव से अभिनव प्रग पांडे भैया बातचीत करे हैं। अब सुनवाए दिन जाए तो फिर बात
0: सुनवाई
2: पंचो राम राम श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक बहुत ही विशेष साक्षात्कार लेकर के। इस बार का ये साक्षात्कार किसी स्वास्थ्य समस्या के ऊपर नहीं है, किसी कृषि से संबंधित या रोजगार से संबंधित बात के ऊपर नहीं है। इस बार का ये जो साक्षात्कार है ये अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि ये आधारित है जो हमारी संस्कृति है, किसी राष्ट्र के प्राण में जो संस्कृति होती है और उस राष्ट्र के प्राण में जो गांव बसता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। आज हम गांवों की तो बात करेंगे लेकिन हम बात करेंगे गांवों की उस ऐतिहासिक परंपरा की, उस ऐतिहासिक थाती की जो किसी गांव से जुड़ी होती है। कई बार ग्रामीणों को गांवों को पता होता है, कई बार नहीं पता होता है। पता होने पर क्या होता है और पता नहीं होने पर क्या होता है और क्या होना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी को जो कि क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी हैं प्रयागराज परिक्षेत्र के, इनसे हम जानेंगे कि ऐतिहासिक जो हमारी थाती है, जो हमारी धरोहरें हैं क्यों इतनी ज़रूरी हैं। इतिहास तो इतिहास हो गया, वर्तमान में वो हमको किस तरह से प्रभावित कर सकता है, हमको क्यों इतना सोचना चाहिए इतिहास के बारे में, धरोहरों के बारे में। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांवों की जब हम बात करते हैं और खासकर प्रयागराज जो परिक्षेत्र है हमारा, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे बांदा चित्रकूट हो, ये सभी किसी न किसी प्रकार से हमारी एक ऐतिहासिक आत्मा को संजोए हुए हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि कई गांवों में हम जाते हैं तो कुछ एक पत्थर या कुछ एक मूर्तियां हमको वहां पर ऐसी दिख जाती हैं जो हमको तो पता चल जाता है कि ये बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन ग्रामीणों को, वहां के लोगों को नहीं पता हो पाता। आपको क्या लगता है किसी गांव का इतिहास उसके वर्तमान को किस तरह से प्रभावित करता है?
3: किसी भी गांव का या स्थान का जो इतिहास होता है वह एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और उसके उस स्थान के विकास की पूरी नींव उसके अतीत में निर्भर होती है। मानव जीवन के इतिहास को अगर हम देखें तो यह नदियों के किनारे बसे गाँव से ही शुरू होती है, उसके पहले पर्वतों की कंदराओं से। तो पर्वतों की कंदराओं में एक समूह रहता था, धीरे धीरे जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने लिए रहने के लिए जगह बनाना शुरू किया। तो मनुष्य की जो प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता है वो है जल। अब वह जल नदियों के किनारे
2: बिल्कुल
3: या प्राकृतिक झीलें, इनके किनारे वो एक समूह में रहना शुरू करता है। तो वो जो गांव हैं वो उस प्रारंभिक संस्कृति को संजोना शुरू करते हैं। तो एक तरह से कोई भी गांव है, एक जो पुरातत्व है या इतिहास जिसको कहें, इतिहास या पुरातत्व सिर्फ एक विषय नहीं है, यह एक मानवीय जीवन की यात्रा है जो हमें बताती है कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँचे हैं। इस अवधि में हमने क्या क्या किया, स्वाभाविक है कि कुछ ऐसा किया होगा जो हमारे पक्ष में नहीं गया होगा
2: बिल्कुल,
3: और कुछ ऐसा किया होगा जो हमारे पक्ष में गया और जिससे हम विकास करके यहाँ तक पहुँचे। तो उन्हीं खामियों और खूबियों से सबक लेते हुए अपने जीवन को और जीव मात्र के जीवन को सुंदर बनाने का जो आयोजन है उसी का अध्ययन, वही इतिहास है। तो अतीत जितना ही समृद्ध होगा हम उतना ही उसके आधार पर अपने भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं।
2: भारत सुभाष जी विश्व का सबसे युवा देश है, हमारे जो युवा हैं वो ऊर्जा से भरे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांवों में कोई ऐतिहासिक धरोहर होती

0: है, कोई स्मारक होता है, कोई तालाब होता है, कोई ऐसा वृक्ष होता है, या कुछ ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं, शिल्प होते हैं। कोई अगर ये कहे कि इन पत्थरों से हम क्यों इतना प्रेम करें, क्यों इनका ख्याल रखें, ये हमको क्या दे देंगे, क्यों करना चाहिए हमको ऐसा, तो इसके लिए आपका क्या जवाब होगा?
1: वही बात जहाँ से हम लोगों ने शुरू की थी कि हमने जो यात्रा शुरू की है, जो विकास की यात्रा शुरू की है, आप कल्पना करें कि मनुष्य ने जो पहला अस्त्र बनाया होगा, वह उसने बनाया नहीं होगा। आज भी हम कैसे इन परंपराओं से अपना जीवन यापन या जीवन व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा मीठे आम का फल लगा हुआ है पेड़ में, और आपको वो आम तोड़ना है। अगल बगल फिर आप उसके लिए कोई अस्त्र बनाएंगे नहीं, जो पड़ा होगा, चाहे वो कोई लकड़ी का डंडा हो या कोई पत्थर पड़ा हो, ईंट पड़ी हो, मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हो, उसी से आप प्रहार करेंगे, वो टूट के चला आएगा। तो ये जो पत्थर के टुकड़े आपको मिलते हैं, ये बहुत तरह के मिलते हैं, और थोड़ा सा डीप जाके हम लोग अगर बात करें तो आप देखेंगे बहुत सारे गाँव में पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बिल्कुल गोल सुंदर पिंडी वाले पत्थर,
0: बिल्कुल
1: कुछ मंदिरों के या देवी देवताओं के मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े भी वहाँ रख के लोग पूजा करते हैं, जबकि हमारी परंपरा ये कहती है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, लेकिन वो टुकड़े वहाँ रखे हुए हैं, हम उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो
0: जी
1: यह कैसे, अच्छा गांव में ये भी है कि गांव में रहने वाली बहुतायत आबादी, अब तो साक्षरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन शुरू में तो इतनी साक्षरता नहीं रही होगी, लेकिन अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति उनका कितना आग्रह था कि वो ऐसे पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे ऐसे खंडित अवशेषों को रख करके भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। तो ये कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपने अतीत को संजोने का एक प्रयास था, एक तरीका था, और ये यही बताने के लिए कि हमारा गांव कितना पुराना है। अतीत के प्रति हम फक्र करते हैं, हम गौरव, और अतीत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये प्रेरणा का स्रोत इसीलिए है कि किसी गांव में जाएं आप, और उस गांव में कोई बड़ी हस्ती पैदा हुई हो तो उसी व्यक्ति के नाम से वो गांव जाना जाता है
0: बिल्कुल
1: कि हमारे गांव में ये हुए हैं, या कोई घटना में उस गांव की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां रहे हों। तो ये सारी जो मूर्त और अमूर्त दोनों परंपराएं, व्यक्तित्व, और वो जो पत्थर के टुकड़े जिनको आप कह रहे हैं, वो उस गांव की एक समृद्धि के प्रतीक हैं, उस परंपरा को संजोने की जो प्रवृत्ति है उसके प्रतीक हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल कुछ एक ऐसे उदाहरण आप हमारे श्रोताओं को, पंचों को, ग्रामीण भाइयों को बता सकते हैं क्या, कि कुछ एक ऐसे शायद गांव हो, प्रयागराज परिक्षेत्र या इसके आसपास, जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हो?
1: चारों तरफ भरे पड़े हैं, जितने पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्थल आज भी बचे हुए हैं वो सब तो गांव में हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम प्रयागराज का शुरू करें तो प्राचीन काल में प्रयागराज प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता था, जिसके अवशेष झूसी में हैं।
0: जी
1: झूसी आज गांव से शहर में तब्दील हो गया है, लेकिन झूसी जहाँ के पुरातात्विक उत्खनन से आज से लगभग 10 से 11 हजार वर्ष प्राचीन अवशेष मानवीय संस्कृति के मिले। झूसी के ठीक बगल में हेतापट्टी गांव है,
0: जी
1: वहां से प्राचीन अवशेष हैं नवपाषाण काल के। प्रयागराज जनपद का ही अंग रहा कुछ वर्ष तक कौशाम्बी, वत्सराज उदयन की राजधानी,
0: बिल्कुल
1: जहां भगवान बुद्ध ने 3 वर्षावास भी किया।
0: जी
1: आज भी उस पूरे एरिया के पुरातात्विक अवशेष वहां, घोषिताराम विहार,
0: जी
1: स्तूप, ये सारे पैलेस, अशोक का स्तंभ एक जो हमारे इलाहाबाद फोर्ट में है वो,
0: जी
1: और एक वहाँ खड़ा है, ये सब हैं। वो कोशम इनाम और कोशम खिराज गांव के बीच में उन्हीं की भूमि पे बसा हुआ है। मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्रयागराज में कुलडीहवा, वहाँ पे प्रतापगढ़ में है हमारा सराय नहर राय,
0: सरायनार नहर
1: महदहा, ऐसे आपके प्रयागराज में है भीटा, मतलब श्रृंगवेरपुर, ये सारे, मतलब चारों तरफ आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हर पांचवा गांव अपनी प्राचीन विरासत को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संजोए हुए है, या उस पे गांव बसा हुआ है, या काट की खेती हो रही है, या उस पे मंदिर बना हुआ है, टीला बना हुआ है। अब विकास की कड़ी में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जगह कम होती जा रही है।

0: बन रही है, इन सब चीजों में ये विनष्ट भी जरूर हो रहे हैं, लेकिन चारों तरफ ये बिखरे पड़े हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज भी ज्यादातर गांव में और वहीं पे संरक्षित हैं।
1: मैं एक साक्षात्कार पढ़ रहा था, एक बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, कि वो किसी गांव में गए थे, ऐसे ही कोई खोज हुई थी उसके संदर्भ में। तो उनसे प्रश्न जो उनसे पूछा गया था वो ये था कि आप धूल फांकते रहते हैं, गांव गांव घूमते रहते हैं, बारिश आंधी पानी धूप सब झेलते हैं, क्या मजा मिलता, क्यों करते हैं ऐसा आखिर, वो भी इतिहास के लिए जो सैकड़ों सालों पहले दफन हो गया। तो उन्होंने कहा कि कई सारे ग्रामीण ऐसे भी होते हैं कि उनको हस्तक्षेप बहुत अधिक पसंद नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनको पत्थर फेंक के मारा वहां पे। फिर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पत्थर देखा तो वो गुप्तकालीन पत्थर था। उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर ये दिया कि ऐसे कितने लोग हैं भाग्यशाली पूरे विश्व में जिनको किसी ने गुप्तकालीन पत्थर फेंक के मारा हो। इससे जुड़ा एक प्रश्न, मैंने ये इसलिए कहा क्यों जरूरी है, ये एक सवाल तो हमने ये किया कि किसी को अगर पता है कि ये ऐतिहासिक रूप से समृद्ध वस्तु है, धरोहर है, शिल्प है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए, ये आपने बताया। अगर किसी को नहीं पता है, कैसे जागरूकता आम जन तक पहुंचे कि उनका गांव कितना महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से, और पूरी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को वो अपने में लेकर के वो मिट्टी चल रही है, युवाओं से कैसे जुड़ा जाए, कैसे उनको इसके बारे में जागरूक किया जाए।
0: इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे भारत सरकार हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, या सभी प्रदेश की सरकारें, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग है। एक योजना तो हमारी ये चलती है कि हम विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं। सभी सक्षम ऑफिसर हर वर्ष अपने कार्य क्षेत्र के किसी न किसी ब्लॉक या तहसील का चयन करते हैं और भारत सरकार से परमिशन लेके उसके हर गांव का हम परीक्षण करते हैं कि इन गांवों में कौन सी हमारी ऐतिहासिक विरासत है, कितने पुरास्थल हैं, स्मारक हैं जो हमारे विरासतीय श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात कि सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यह एक विषय है, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग है।
1: मैं आपको रोकना चाहूंगा सुभाष जी, आपने विश्वविद्यालय की बात की, इसमें एक मैं छोटा सा प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा, क्या प्राथमिक विद्यालयों में जो स्थानीय इतिहास है वहां का वो पढ़ाया जाना आवश्यक होना चाहिए।
0: देखिए, इतिहास तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाता है,
1: जी
0: लेकिन स्थानीय इतिहास एक तरह से बड़ा गंभीर विषय है
1: बिल्कुल
0: और बड़ा माइन्यूट विषय है। अगर आप हर गांव का इतिहास पढ़ाने लगेंगे तो आपको पुस्तकों में हर गांव की पुस्तक बदलनी पड़ेगी, हर ब्लॉक की पुस्तक बदलनी पड़ेगी। तो हर स्थानीय इतिहास हम हर बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन इतिहास की एक जो सामान्य प्रवृत्ति है और ऐसी विरासतों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग या इसके बारे में हम इतिहास की पुस्तक में कुछ अध्याय, कुछ खंड जरूर जोड़ सकते हैं। और ये जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अतीत के बारे में जितना ही आप जानेंगे, अपनी विकास यात्रा जानेंगे और
1: जी
0: वहीं से इंस्पिरेशन मिलेगा। तो युवाओं को जिनको नहीं पता है या जिनको जोड़ना है, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सर्वे करते हैं तो एक तो अखबारों के माध्यम से ये जानकारी जाती है कि
1: जी
0: यहाँ यहाँ गांव मिले। दूसरे जितने सर्वे होते हैं उन सब की हम लोग रिपोर्ट भी लिखते हैं, छोटे छोटे ब्रोशर्स भी लिखे जाते हैं जो
1: जी
0: आम जनता में बांटे जाएं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग कर रहे हैं कि सभी पुरातत्व विभाग का काम है कि ये अपने विरासतों को संरक्षित करने या उनके विषय में जागरूकता फैलाने हेतु
1: जी
0: कुछ शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करें। तो इस कड़ी में हम लोग साल भर में कम से कम 20 से 25 कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वो सब विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में।
1: जी
0: उसमें चित्रकला प्रतियोगिता हो गई, भाषण प्रतियोगिता हो गई, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो गई। उसके साथ साथ हम अपने जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके एग्जीबिशंस भी लगाते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं जिसमें उन बच्चों को बताते हैं। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर उसको हमने वहीं से उसके बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया तो वो तो अपने इतिहास के प्रति वैसे ही अवेयर रहेगी,
1: जी
0: उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसको वो संरक्षित करने में अपना योगदान करेगी।
1: गांवों को सीधे तौर पर पर्यटन से जोड़ना लाभदायक हो सकता है इस पहल में।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे सरकार बड़ी गंभीरता से काम भी कर रही है। रूरल

0: टूरिज्म इस समय पूरे प्रदेश में और देश के अन्य प्रदेशों में भी इसका बहुत जोर तोर से प्रचार।
1: रामायण सर्किट जैसे परिपथ इसी का हिस्सा हो सकते हैं।
0: ये सभी परिपथ, चाहे आप रामायण परिपथ ले लें, महाभारत परिपथ ले लें, बौद्ध सर्किट ले लें, जैन सर्किट ले लें, इसके अतिरिक्त जो हमारे महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, स्पेशली हम जहाँ पे प्रयागराज में बैठे हैं, इसके उत्तर तरफ गंगा यमुना से सिंचित एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है,
1: जी
0: और दूसरी तरफ विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो सभी खनिज संपदाओं से भरपूर है। इस एरिया में बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। वो स्थल बियाबान में है, जहाँ पे कि नगर नहीं है, वहाँ आप रह नहीं सकते, तो रूरल टूरिज्म के नाम पे वहाँ पर कुछ गाँव में कुछ होम स्टे बनाए जा रहे हैं, ताकि आदमी अगर जाना चाहे तो उस ग्रामीण संस्कृति का भी आनंद ले और उसके आसपास जो ऐसे पुरास्थल या पुरा संपदा हैं उसके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करे। तो ये गांव बिल्कुल टूरिज्म से जुड़ रहे हैं। और अभी आप अगर थोड़ा सोशल मीडिया पे देखें तो जैसे उत्तराखंड में पहले बहुत कम डेस्टिनेशन थे, किसी से भी पूछिए तो वो मनाली चला जाएगा, मसूरी चला जाएगा, इसी तरह के कुछ नाम थे। अभी सोशल मीडिया पे एक एक गांव से सूचनाएं आ रही हैं और
1: बिल्कुल
0: उनको वो डेस्टिनेशन बता रहे हैं कि
1: जी,
0: यहाँ आने पे आपको ये पीक्स दिखाई देंगी, ये लेक दिखाई देगी।
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छे ढंग से चल भी रहा है और ये बहुत ज़रूरी है और हम इसको जोड़ सकते हैं और जोड़ रहे हैं।
1: ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका आप देखते हैं इसमें?
0: सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, हमने अपने जीवन में थोड़े इस पे प्रयास किए, कुछ सफल हुए। जितने भी हमारे पुरास्थल हैं वो सब ग्राम पंचायतों में हैं, और भारत जो विरासत के मामले में बहुत ही समृद्ध है, इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे पास पुरास्थल और मॉन्यूमेंट्स हैं कि कोई भी सरकार इसको संरक्षित कर ही नहीं सकती अकेले बिना जन सहयोग के। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका ग्राम पंचायत की है, क्योंकि आपके गांव का जो टीला है, मैंने यही प्रयास किया कि जब हम विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं तो एक ब्लॉक में अगर हमने 100 गांवों का सर्वे किया तो आप मान के चलिए कि 25 से लेके 35-40 गांव तक ऐसे होते हैं जो अपने 4000 से 2000 साल पुराने सांस्कृतिक विरासत को कहीं ना कहीं सजोए होते हैं। बहुत सारे गांव उस पर बसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: बहुत जगह मंदिर हैं, बहुत पे खेती हो रही है, लोग जानते भी हैं कि ये पुराना है, बहुत लोग उसके महत्व को नहीं जानते। हमने बहुत जगहों पर यह प्रयास किया कि ग्राम प्रधान जी लोगों के माध्यम से उनको समझाया कि यह आपके गांव की ऐतिहासिक थाती है, आप मनरेगा से लेके इन सारी योजनाओं में सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करिए, चारों तरफ उसके बाड़ बनाइए, उसको अपने गांव का पिकनिक स्पॉट बनाइए, वहाँ पेड़ लगवाइए, हम बोर्ड हम लिख देंगे, उसका जो ऐतिहासिक महत्व है, उसका जो पुरातात्विक महत्व है, उसकी प्राचीनता, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, आप वो लिख के एक बोर्ड वहाँ लगा दीजिए, उस एरिया को बेहतर बना दीजिए, इससे आपके गांव का एक ऐतिहासिक स्थल संरक्षित हो जाएगा। तो अपनी विरासत को संरक्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की हो सकती है तो वो ग्राम पंचायत की हो सकती है। क्योंकि अब आप मुझे एक उदाहरण के तौर पर ले लें कि मैं क्षेत्रीय पुरातत्व तो अधिकारी हूँ प्रयागराज क्षेत्र में, हमारे पास पूरे प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल और अयोध्या मंडल के आधे जिले हैं, तो 7 से 8 जिले हैं, हर जगह हम नहीं पहुंच सकते। वहां
1: वही
0: सबसे
1: बिल्कुल
0: पहला व्यक्ति अगर कोई पहुंच सकता है तो उस गांव का आदमी, और सबसे पहला अथॉरिटी अगर कोई हो सकती है तो वो ग्राम प्रधान हो सकता है। तो
1: बिल्कुल
0: ग्राम पंचायतें इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे होने वाली भी है।
1: इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करना चाह रहा था, इसका जवाब आपने आधा दे दिया कि कई बार सरकारी संसाधन जो हैं वो सीमित होते हैं। सीमित इस अर्थ में होते हैं कि आप किसी विशिष्ट विशेष गांव में हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते, वहां का जो स्थानीय व्यक्ति है वो ही हो सकता है। तो क्या इस बारे में, मान लीजिए कोई बहुत पुराना किला है, जर्जर हालत में है, टूट रहा है, वहाँ की ग्राम पंचायत, वहाँ के लोग उसका संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जिससे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे में आपको क्या लगता है, कैसे ये काम, अगर वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर या पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर करना चाहें तो कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी ऐतिहासिक पुरास्थल और स्मारक हैं इसमें दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी वो है जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है, उस पे करने में हम सक्षम हैं, अगर कहीं कोई कमी है वो बता दें, हम अपने संसाधनों से करते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि हजारों की संख्या में स्मारक और स्थल हैं और हमारे पास

0: कुछ 100 ही हम संरक्षित कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा है जो लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है जिसे सरकार संरक्षित नहीं कर सकती, उसे वो बहुत आराम से संरक्षित कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो उसमें तकनीकी सहयोग हमसे ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ग्राम पंचायत में अगर कोई ऐसा स्मारक स्थल है जो सार्वजनिक भूमि पे बना है, जो सरकारी या ग्राम सभा की प्रॉपर्टी है, तो उस पे ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, ये सभी लोग मिलकर उसको संरक्षित कर सकते हैं। पुरातत्व विभाग उस पे अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, शेष और कोई बाधा नहीं।
1: आज मोबाइल का दौर है, हर युवा के हाथ में मोबाइल है, हर युवा के पास जुनून है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने गांवों में जा रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना के बाद से ऐसा समय आया है कि हम फिर से गांवों की ओर लौट रहे हैं। हम मड हाउसेस बना रहे हैं, गांवों में जो कच्चे घर हुआ करते थे उनको छोड़ करके हम चले आए। अब हम मड हाउसेस बना रहे हैं, उस पर किराया दे के रह रहे हैं शहरों में। कोई युवा अगर गाँव जाता है, कई बार रीलों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि ये चीज़ें अगर ऐसी दिख रही हैं तो ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध हो सकती हैं। कोई गांव, कोई स्थान का इतिहास या संस्कृति से कोई वैसा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई गया वहां पर, उसको लगा कि कुछ ऐसी चीज़ मिली जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टि से, अगर यहाँ पर और अधिक काम किया जाए तो, ऐसे में वो क्या करे, किससे संपर्क करे, कैसे संपर्क करे,
0: उसको एक सीधा सा 2 लाइन का पत्र हमें लिख देना है,
1: किसको? पुरातत्व
0: चाहे
1: विभाग को।
0: पुरातत्व विभाग को, चाहे वो जिस क्षेत्र में है वहाँ के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी को लिख दे, या वहाँ के जिलाधिकारी को लिख दे सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय को लिखेंगे वो पत्र आ जाएगा मेरे पास, या पुरातत्व के निदेशक को, किसी भी सरकारी जिम्मेदार संस्था को लिख देंगे, वो घूम के हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी पत्र मिलते हैं उसके सापेक्ष हम उस गांव का सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करके वहाँ की जो वास्तविक स्थिति होती है उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से सूचनाएं मिलने पे हम ये भी डिसाइड करते हैं, जब देखते हैं कि ये संरक्षित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है तो सरकार उसको अपने संरक्षण में लेती है, नहीं महत्वपूर्ण है या संरक्षण में लेने लायक नहीं है, व्यक्तिगत संपत्ति है, तब हम उनको सजेस्ट भी करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बचाया जाना चाहिए। इसके बचाए जाने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बताते
1: देखिए
0: हैं।
1: सुभाष जी, ऐसी कई सारी चीज़ें इसलिए भी सामने नहीं आ पाती क्योंकि लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर इनको पता चल गया तो हमारी जमीन चली जाएगी।
0: ये एक भ्रम है। जमीन तो वैसे आप जानते हैं कि सरकारी नियम के अनुसार जमीन किसी की नहीं होती है, वो हमेशा सरकार की होती है।
1: बिल्कुल
0: जमीन के आप मालिक हैं तो सिर्फ उतनी ही गहराई तक जितनी गहराई तक आपका हल चलता है,
1: क्या बात
0: उसके
1: है।
0: नीचे 1.5 फीट, मान लीजिए 1.5 फीट से अधिक गहरा आप खुदाई नहीं कर सकते, हल नहीं चल सकता। जो फसल लगती है वो 1.5 फीट में हो जाती है। तो जमीन, जितनी भी जमीन है उसके आप मालिक हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 फीट के। उसके नीचे अगर कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वह ऐतिहासिक विरासत से संबंधित हो या कोई खनिज संपदा हो, वो जैसे ही वहाँ निकलती है तो सरकार उसको अधिग्रहित तो करेगी,
1: जी
0: लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसे ही हटा देगी, वो आपका जो वांछित नियमानुसार मुआवजा है वो भी देगी। जनता के समन्वय से ही हम इन सारी चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं, तो इसमें भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
1: जी सुभाष जी, समय लगभग खत्म होने को है। अंतिम प्रश्न, इतिहास पीढ़ियों से बनता है, कई सारी पीढ़ियां खप जाती हैं एक छोटा सा इतिहास बनाने में। हमारी अगली पीढ़ी तक कोई इतिहास पहुंचे, इसके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि हमारे बाद तो हम नहीं रहेंगे, पीढ़ियां उसको किस तरह से लेंगी ये हम तय कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
0: ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर भी वही है जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, कि जीव मात्र की जो यात्रा है, विशेष रूप से मनुष्य की जो विकास यात्रा है, हमने पैदल शुरू किया था, जंगलों में तीर धनुष से शुरू किया था, और आज हम मिसाइल बना रहे हैं। अगर बीच की एक कड़ी लुप्त हो गई तो आगे का जो अनुसंधान है उसको हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वो विकास निरंतर होता रहे, वो परिष्करण से ही चलता है। तो इतिहास इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि ये हमने अपने अतीत से वर्तमान तक की यात्रा में जो हमने दूरी तय की है, इसमें हमने कौन से सही रास्ते अख्तियार किए हैं और कौन से त्रुटि हमने की है, उन त्रुटियों से सबक लेते हुए जीव मात्र के कल्याण हेतु हमें आगे कैसे

0: योजनाएं बनानी है, ये अगर इतिहास मिट गया तो आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतिहास पढ़ना और पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना सबसे आवश्यक है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने बताई और हमारा समय लगभग खत्म हो गया है। अंत में चलते चलते अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो या आप हमारी तरफ से हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें या अपील करना चाहें।
0: हम बस अपने श्रोताओं से यह निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी पुरातात्विक विरासत के बारे में सरकार से अगर उनको कोई भय हो तो उसको बिल्कुल निकाल दें। सरकार जनता की सेवा के लिए है, उन्हीं की विरासत को संरक्षित करने के लिए है। और युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि जो स्मारकों पर जा करके उसको थोड़ा विरूपित और गंदगी करते हैं वो कृपया ना करें, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है। हम जाते हैं तो वहाँ हमारी बहुत छोटे से एफर्ट से इस गंदगी से हम बच सकते हैं। कोई भी कूड़ा डस्टबिन में रखें, एक निश्चित जगह पर रखें, और किसी जगह पर भी अपना नाम न लिखें या ऐसा कुछ न बनाएं जिससे कि वो विरूपित हो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि ये सहस्राब्दियों की वो पूजा है, सहस्राब्दियों पुरानी विरासत है, और आपके सिर्फ एक स्केच से वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो यह हम लोगों की एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी है, और लिखने का काम तो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरा विनम्र निवेदन उस युवा पीढ़ी से है जो पढ़ी लिखी है और किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जाके शौक में ऐसे कार्य कर देती है जिससे वो स्थल विरूपित होते हैं। आप यकीन मानिए, ऐसा करने से आप अमर नहीं होंगे, बल्कि जो देखेगा वो आपके प्रति एक दुर्भावना और आपके प्रति एक खराब भावना रखेगा। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसका हम अनुपालन करें।
1: तो सुना पंचों श्रोताओं आपने कि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी ने कितनी ज़रूरी जानकारियाँ दी। अपने गांव को सहेजिए, अपने गांव से जुड़ी विरासत को सहेजिए, अपने गांव से जुड़े इतिहास को सहेजिए, क्योंकि इतिहास ही है जिसने हमें इस वर्तमान में इस रूप में ला करके खड़ा किया है, और आज जो वर्तमान है वो कल इतिहास हो जाएगा। अगर आप अच्छा इतिहास बनाना चाहते हैं तो इतिहास के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ हमारे इस कार्यक्रम से सीखेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और श्रोताओं, चलते चलते हम आपसे ये वादा किए जाते हैं कि अगली बार फिर किसी विशेष हस्ती के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और चलते चलते बशीर बद्र साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर कि कभी फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरें पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। हर एक कण इतिहास है, हर एक क्षण इतिहास है, और इतिहास को संजोना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, खासकर युवाओं का। अगली बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए पंचायत घर। नमस्कार।
2: हाँ भैया, देखा जोन बातचीत रही, बड़ी विशेष बातचीत रही।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: हमारे गाँव, उनकी ऐतिहासिक धाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी, डॉक्टर सुभाष यादव से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत रही। डॉक्टर सुभाष जी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बाटन प्रयागराज परिक्षेत्र से, कितना बढ़िया तरीके से बताएं कि जोन इतिहास बाटई, सिर्फ इतिहास भैया कागज के पन्ना तक सीमित नहीं बाटई, अपने आसपास का जोन परंपरा बाटे, अपने आसपास का जोन स्थापत्य चीज बाटे, भाई वह इतिहास बाटे, ओकर संजोवे के जोन जिम्मेदारी बा सब जने का है।
3: बिल्कुल,
2: पूरे समाज की जिम्मेदारी बाटे। अगर समाज में भैया आचार विचार संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के में जाते हैं, तो भाई इतिहास के माध्यम से, स्थापत्य कला के माध्यम से, कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, ये सब चीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं।
3: बिल्कुल भैया,
2: जैसे भैया हम सब अपनी खेती किसानी में जोन तौर तरीका बांटे, जोन खेती किसानी के तौर तरीका बांटे, अलग अलग जोन जानकारी बांटे, वो भाई बूढ़ा बुजुर्ग जोन बांटन पुरनिया बांटन उनसे लिए है। उसी प्रकार समाज भी भैया तभी आगे बढ़त है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आचार विचार संस्कार जाते हैं।
3: बिल्कुल भैया, देखा आप तो पंच भैया लोगन से समय होता है विदा लेके।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: लेकिन जात जात भैया ये कहा भाई ना कि हमारे कार्यक्रम उनका कैसे लगा थे, वह पे अपन प्रतिक्रिया जरूर देवा करें, और कोई नंबर जल्दी से लिख लें 8004926250।
2: बिल्कुल भैया।
3: हम कहे भैया देखा पंच भैया अपन खेती हाँ। किसानी काम देखें और धान के लग वही समय हो गया है, एकदम डटा रहा है।
2: बिल्कुल।
3: और दौ राजा कब मेहरबानी कर दही, तो भैया देखा पंचो राम राम।

अभी हमारी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्ति पूर्ण रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना। देशभक्ति रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति भक्ति के भावों का बीजारोपण होता है।

0: प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हम अपनी सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा। 10 बजे सुनिए माला तनखा का लिखा नाटक पहचान। और 10:30 का वक्त शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के लिए निर्धारित है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन सुनवाएंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे, ये आकाशवाणी प्रयागराज है। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले कर रहे हैं प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को

0: को मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां का विकास देखकर अभिभूत होकर जाते हैं।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचितागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भद्रेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती के काम में लगे 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब दान राशि की गिनती के लिए 13 कर्मचारी शेष बचे हैं। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों को पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा और बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहनकर काम करना होगा, जिससे दान राशि की निगरानी और पारदर्शिता बनाई जा सके। मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मिश्र कल राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में ट्रस्ट के नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन

0: देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट का वितरण और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएं। प्रदेश भर में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: सारे ब्लॉकों में जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश से हो रही जनहानि पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज और पश्चिमी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयाग।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उसके प्ले स्टोर में जाना होगा और डाउनलोड करना होगा प्रसार भारती का ये ऐप जिसका नाम है न्यूज ऑन AIR। स्टूडियो की घड़ी में 7:45 हो चुके हैं। वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं संगीता भरद्वाज। इनके स्वर में कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं मीराबाई की इस भक्ति रचना के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं संगीता भारद्वाज। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से अभी आप सुन रही थी संगीता भारद्वाज के स्वर में भाई जी की ये रचना सुगम संगीत के प्रोग्राम के तहत। अब आज का सुगम संगीत का ये प्रोग्राम यही खत्म होता है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमारी कार्यक्रम सुन रहे हैं। वक्त हो चला है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज का ये चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है सुप्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली पर। असद भोपाली यानी लफ्जों के जादूगर। आज है 10 जुलाई, भोपाल की सरजमी पर जन्मी एक ऐसे शायर गीतकार का जन्मदिन है जिनकी कलम ने हिंदी सिनेमा को अमर गीत दिए, सुरमा भोपाली। वो जब याद आए तो श्रोताओं, आज हम याद करेंगे असद भोपाली जी को।

असद भोपाली यानी असदुल्लाह खान, जन्म हुआ 10 जुलाई 1921 को भोपाल में। पिता मुंशी अहमद खान अरबी फारसी के शिक्षक थे और घर का माहौल शायरी और अदब से लबरेज था। कॉलेज के मुशायरों से शुरू हुआ सफर 1949 में फिल्म दुनिया के जरिए मुंबई पहुंचा और भोपाल से इतना लगाव रहा कि अपनी ही पहचान के नाम से फिल्म भी आई जिसका नाम था सुरमा भोपाली। तो श्रोताओं, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं फिल्म सुरमा भोपाली के इस टाइटल सॉन्ग से।

दोस्तों, अदब साहब की खासियत थी, दर्द भी लिखते थे तो रुला देते थे और मस्ती भी लिखते थे तो झुमा देते थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले सब ने उनकी कलम को आवाज़ दी। फिल्म पारसमणि, टावर हाउस, एक सपेरा एक लुटेरा, मैंने प्यार किया, उनकी शायरी हर दौर में जिंदा रही।

वो जब याद आई, बहुत याद आई। फिल्म पारसमणि का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे लिखा असद भोपाली साहब ने। ये वो पहला गाना था जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। रफी साहब

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, जिस वक्त आप सुनेंगे विशेष चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है असद भोपाली पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्र थे सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार असद भोपाली पर, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

करियर के आखिरी दौर में भी नई पीढ़ी को अपना मुरीद बना लिया असद साहब ने। प्रेम का पैगाम लेकर उड़ता ये कबूतर।

दोस्तों, असद भोपाली साहब को उनके शानदार योगदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके गीतों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि सिने जगत में भी उन्हें एक ऊंचा मुकाम दिलाया।

फिल्म का नाम एक सपेरा एक लुटेरा। मोहम्मद रफी की आवाज़।

श्रोताओं, 9 जून 1990 को असद भोपाली साहब हमसे जुदा हो गए, लेकिन उनके लफ्ज आज भी हमारे बीच कायम हैं।

और अंत में आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से असद भोपाली साहब को उनके जन्मदिन पर हम विनम्र नमन करते हैं, उनकी कलम को सलाम करते हैं, उनकी शायरी को सलाम करते हैं। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने दोस्त संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी पूनम तिवारी की वार्ता। विषय होगा महिलाओं में डिजिटल साक्षरता। इसके अलावा वंदना सरोज और सखियां लोकगीत प्रस्तुत करेंगी।

विकास श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत सुनिएगा कल के लोकमाधुरी कार्यक्रम में 10:05 पर हमारी प्रातःकालीन सभा में। इसके अलावा दिन में 2:30 पर भी आप लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे। कलाकार होंगे जंग बहादुर यादव और उनके साथी। कल शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता रितिशा ओझा की वार्ता सुनेंगे। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ता दबाव और जूही चावला पर केंद्रित आज की शाम आपके नाम। कल शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता। विषय होगा विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि। श्रोताओं, अभी आप हमारी कार्यक्रमों के बारे में सुन रही थी। प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को ही अब से थोड़ी ही देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री

0: मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जा

0: जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में

0: रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival.

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हमनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोजा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में

किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशो खरोश से भरा हुआ था क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वजीर आजम ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिले दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्र आजमों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत सरमाया कर

पेशकश की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्रआज़मों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मुआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि यह तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन ने मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लू प्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इकतसादी और तहफुजाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के हमराह ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेनिंग हासिल की हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर नीज मस्नूई जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। उम्मान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और उम्मान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने उम्मान में भारतीय निषाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उम्मान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोश खरोश काबिल तारीफ है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के शहर गया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के बिहार इंस्टीट्यूट में कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामानी उमूर के वुजराए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में आइंदा मॉनसून इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पार्लियामेंट का यह इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और अगस्त की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मेघवाल ने कहा कि आने वाले इजलास के लिए कानून साजी के उमूर के प्रोग्राम का जामे जायजा लिया गया और जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेल ने 680 किलोमीटर तवील शिमाली रेलवे के रास्ते पर हिफाजत और कामकाज में बेहतरी लाने की गरज से 206 करोड़ रुपए लागत के कवच निजाम को तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद मकामी हिफाजती निजाम को मसरूफ तरीन और कलीदी तौर पर अहम रास्तों पर फैलाना

0: रेल की वजारत ने कहा कि कवच विजन 4.0 को दिल्ली डिवीजन के रेवाड़ी दिल्ली और शकूर बस्ती भटिंडा सेक्शन पर लागू किया जाएगा। इस निजाम को खतरनाक वाकयात और ट्रेनों के तसादुम के वक्त सिग्नल को रोककर रेलवे की हिफाजत को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वजारत ने कहा कि यह निजाम ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर खुद ब खुद ब्रेक लगाता है और ट्रेनों को हिफाजत के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक चलने की इजाजत देता है। यह मनफी मौसमी हालात जैसे घने धुंध के दौरान काबिले एतमाद ट्रेन ऑपरेशन को भी तकवीयत देता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मिशन स्ट्रिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निजाम में से एक बनकर उभरा है, जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वजह किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाती तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाती सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीकेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायजा लिया जिनका मकसद ज्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जेली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: IMD के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिनभर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सोमिया शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उज्रदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को

0: एक रोज़ा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजिमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज बीजेपी ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की, ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर व खौज किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बरतानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर,
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है गजलों की कहकशा। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। आप सुन रहे हैं गजलों की कहकशा, वो आसमान जहां अल्फाज सितारे बनकर टिमटिमाते हैं और धुनी चांदनी बनकर दिल को छू जाती हैं। आज की इस महफिल में हम लाए हैं हिंदी सिनेमा की कुछ बेमिसाल गजलें, कुछ नई कुछ पुरानी, पर सबके जज्बात एक जैसी, मोहब्बत, जुदाई, इंतजार और सुकून से लबरेज। तो चलिए शुरुआत करती हैं उस दौर से जब गजल का मतलब था जगजीत सिंह की आवाज। फिल्म अर्थ से ये गजल आज भी हर टूटे हुए दिल की दवा है।

श्रोताओं, गजल का सफर यहीं नहीं रुकता, नई पीढ़ी ने भी इसे बखूबी निभाया। साल 2006 में फिल्म वो लम्हे और इस गजल ने साबित कर दिया कि दर्द का कोई दौर नहीं होता। सुनिए जावेद अहमद की आवाज में शहीद कादरी का ये कलाम।

श्रोताओं, अब चलते हैं 90 के दशक में गुलजार साहब के लफ्ज, भूपिंदर सिंह की आवाज में फिल्म मासूम की ये गजल।

एक नई पेशकश फिल्म गुजारिश से, संजय लीला भंसाली का संगीत और कैलाश खेर की आवाज, दर्द और सूफियाना का संगम।

तो श्रोताओं, यही खत्म होती है आज की गजलों की कहकशा। उम्मीद है इन नगमों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सितारों के साथ इसी आसमान के नीचे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों का प्रोग्राम कहकशा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन की कहां,
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माला तनखा का लिखा नाटक पहचान।

0: मम्मी।
1: हाँ बेटा, कैसी है तू?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, लेकिन मम्मी प्लीज़ मुझे तुमसे बहुत जल्दी मिलना है,
1: क्यों?
0: बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ मम्मी।
1: अरे इस तरह से बेटी समधन जी के घर आना, बेबी कैसे आ जाएं? अरे हम लड़की वाले हैं।
0: तो ग्रैंड रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहाँ मिल लेंगे, हम दिन में 12 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। दिल्ली से यहाँ का सफ़र 2 ही घंटे का तो है। मम्मी मेरा मन बहुत दुखी है, अजीब सा लग रहा है, जब मिलोगी तब बताऊंगी। मैं अकेली आऊंगी, आओगी ना मम्मी?
1: अच्छा, ज़रूर आ जाएंगे बेटे, हमारे होते तू दुखी हो? हाँ, मैं और तेरे बापू ज़रूर आ जाएंगे।
0: अच्छा मैं रखती हूँ, माँ जी आ रही हैं।
2: बहू बहू, रीता क्या बात है? बड़ी घबराई से आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या बात है बेटी? स्कूल के लिए तैयार हो गई? मैं उधर ही जा रही हूँ, तुझे छोड़ती चलूँगी, साथ चलेगी?
0: जी जी माँ जी, नहीं, घबराने की क्या बात है, असल में मेरी मेरी एक सहेली आई हुई है, वो मिलना चाह रही थी।
2: अरे तो उसे घर बुला ले।
0: जी नहीं, बात ये है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वो अपने अंकल के घर सबको बुला रही है।
2: सबको यानी हमको भी?
0: नहीं, मतलब बाकी सहेलियों को।
2: कहाँ रहते हैं उसके अंकल?
0: जी, वो स्कूल से आके ले जाएगी मुझे।

0: छोटे बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है ना, बस मिलकर आ जाऊंगी। चलो माँ जी।
1: ऐसे अकेली जाएगी? आने का रास्ता मालूम है ना? गाड़ी भिजवा दो।
0: एक साल से हूँ यहाँ, रास्ते जान गई हूँ।
1: ठीक है, तो फिर अपने अपने ससुराल की बातें होंगी, है ना?
0: माँ जी आप भी क्या कह रही हैं, होंगी तो, मुझे कोई डर है।
1: रीता, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? यहाँ हो तो मन में न रखना बेटा, अब ये घर तुम्हारा ही है। अब तक मैंने संभाला, अब तो तुम लोग जानो। आरती तो छोटी बहन जैसी है, अक्षय भी तुम लोगों से छोटा है। अब बहुत खट लिए हम, अब हमें छुट्टी चाहिए। इन्हें तुम लोग देखो, हम लोग तो बस अब आराम से बैठकर तुम लोगों का सुख देखें।
0: जी
2: तो ये बात है रीता, तेरी बातों से तो यही लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। बेटी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, समय के साथ सब सुलझ जाएंगी। शरीफ लोग हैं तेरी ससुराल
0: समय के
2: वाले।
0: साथ हम इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। पापू छोटी छोटी बातें ही तो रोज चुभती हैं, हर वक्त उनकी आंखें मुझे परखती रहती हैं।
2: लेकिन ये भी कोई शिकायत की बातें हैं? वो चाहती हैं कि तू भजन सीख, आरती को छोटी बहन की तरह मान, घर गृहस्थी को संभाल बस उनके ढंग से, तो भी क्या बुरा है? फिर तू अपने ढंग से कुछ करती है तो भी तो वो कुछ कहती नहीं है तुझसे।
0: कहती नहीं तो क्या, जता तो देती हैं।
3: जी जरा आप चुप रहें, हम औरतों की बातें औरतें ही समझ सकती हैं। हाँ बोल बेटा, तिलक तो तेरे साथ ठीक से रहता है ना?
0: उनकी तरह तो ठीक से ही रहता है, हाथ जोड़े खड़ी रहूं यही चाहते हैं वो, बस पूरे भक्त हैं बाबूजी और माँ जी के। बात ये है मम्मी कि वो लोग हमसे बहुत अलग किस्म के हैं, एक साल झेल लिया बस, अब नहीं झेल सकती मैं।
2: बेटी, क्या कह रही है तू?
0: मम्मी जी आप देखिए ना, सुबह उठते ही भजन का टेप लग जाता है, बाबूजी माँ जी तो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। मैं सुबह उठती थी तो पॉप लगाकर डांस करती थी, एक्सरसाइज भी हो जाती थी, यहाँ तो बस जैसे मंदिर या धर्मशाला में रह रहे हूँ।
3: अरे बेबी, तो तू हेडफोन लगा के सुन लिया कर।
2: अरे भगवान का नाम सुबह सुबह सुनाई दे तो अच्छा ही है। शादी पक्की करने के पहले हमें तो मालूम था कि घर का माहौल कैसा होगा। तुम्ही ने तो मास्टर रखकर बेबी को भजन सिखवाया था। बेबी के ससुराल वालों के आने पर बाजार से खरीद खरीद कर रामकृष्ण गणेश जी की तस्वीरें पूरे घर में टंगवा दी थी। तो अब
3: ओपो, आप भी, अरे ये सब तो लड़की वाले करते ही हैं, वरना अच्छे लड़के हाथ में कैसे आवे।
2: देखो रीता, अब तुम बच्ची नहीं हो, जरा सोच समझ कर।
0: बच्ची नहीं हूँ तभी तो आगे की सोच रही हूँ। मम्मी देखिए ना, माँ जी अभी से सुना रही हैं कि अक्षय और आरती को हम ही को सेटल करना होगा। अब लीजिए संभालिए, नो बाबा नो।
2: भाई, तुम लोग बड़े हो, जिम्मेदारी सौंपना तो अपनेपन की निशानी होती है। अक्षय तो शहर के बाहर नौकरी पर लग गया है, आरती भी शादी के बाद चली जाएगी, परेशानी क्या है?
3: माँ अभी से ही, और क्या, अरे साल भर तो हुआ नहीं कि बहू को पिसने के लिए तैयार करने
2: ऐसा
3: लगे।
2: नहीं है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे अच्छे शरीफ लोग वो और तुम।
0: सब समझ में आ रहा है पापू, आप ही नहीं समझ रहे हैं, ये शराफत एक जाल है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं।
3: मतलब बेबी,
0: देखिए ना, 1.5-2 साल बाद बाबूजी रिटायर हो जाएंगे, आमदनी कम हो जाएगी, तब क्या होगा, हम न रह पाएंगे न जा पाएंगे। उस वक्त कमाएंगे हम, घर उनका होगा, खटूंगी मैं, हुक्म उनका होगा, सारी जिंदगी पुरानी बातें, पुराने तरह का खाना और पुराना संगीत। उफ,
2: उन्होंने देखो तुमसे कुछ नया करने के लिए मना तो नहीं किया है?
0: इतने शरीफ लोगों के सामने हिम्मत कैसे पड़े। मैं लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ पापू, लेकिन कैसे करूँ, मुझे ये घर अपना लगता ही नहीं, इसीलिए स्कूल में नौकरी कर ली, सुबह से दोपहर तक बाहर, बाकी सास जी जो कुछ काम कहती हैं तो सिर दर्द का बहाना कर देती हूँ, बस फ्री।
2: आखिर तू चाहती क्या है, जाकर डिस्को में रहेगी?
0: मैं अलग रहना चाहती हूँ, वहां मैं जो चाहूं जैसे चाहूं करूं।
3: ठीक है बेबी, तूने दामाद जी से कहा?
0: ओ मम्मी तुम भी दामाद जी, सीधे तिलक नहीं कह सकते?
3: हाँ हाँ चल तिलक।
0: कहा था, बहुत नाराज हो गए।
3: तू ऐसा कर, कुछ दिनों को दामाद जी को, नहीं, तिलक जी को मेरे घर ले आ, फिर देख धीरे धीरे वो तेरे मायके को भी अपना घर ही समझने लगेंगे, तो तेरे लिए आसान हो जाएगा ना, सासू जी को भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा तंग कर लिया करना।
0: करती तो हूँ लेकिन वो शांत रहती हैं।
3: बेटा बहुत बड़ा

0: कदम है, धीरे धीरे चलना होगा।
1: राजो तुम्हें हो क्या गया है, उसे क्या समझा रही हो? देखो मैं इसमें तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा।
0: क्यों?
1: ये तो वादा खिलाफी होगी ना। मैं कैसे साथ दे सकता हूँ? देखो उन्हें साफ साफ कहा था कि उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो उनके साथ रहने को तैयार हो।
0: कहा था सो कहा था, अब अपनी संतान का जी दुखे तो क्या करें?
1: तो जी खुश करने की राहें खोजो। बेटा अपने को और उनको बड़ी गंभीरता से पहचानना सीखो, उनके करीब आने की कोशिश करो, उन्हें भी अपनी बातों को समझने के अवसर दो। सुख इसी में है। कहीं ऐसा ना हो कि तिलक ही तुमसे अलग। हे प्रभु मैंने ये क्या कह दिया?
0: बस बस बस, तुम पुरुषों को यही धमकी देना आता है। सारी उम्र मैं परिवार के लिए किस तरह से पिसी हूँ ये तुम्हें याद नहीं क्या?
1: और परिवार ने जब तुम्हें बड़ा मानकर सम्मान दिया, बेटी की शादी में हर तरह का सहयोग दिया, छोटे भाई की अच्छी नौकरी के फायदे हमने उठाए, तब तो बहुत खुश होती थी तुम।
0: अरे तो अपने होते किस लिए हैं?
2: पापू प्लीज, मैं नाता तोड़ने को तो नहीं कह रही हूँ, लोग रहते ही हैं और खुश भी रहते हैं।
1: शहर के शहर में रहते हुए, अपना बड़ा सा घर होते हुए भी 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अलग रहोगी तो हमारी और उनकी नाक न कटेगी।
2: पापू प्लीज, अगर खुशी नसीब न हुई तो?
1: तू हमेशा की जिद्दी रही है। जिंदगी की प्राथमिकताओं को पहचान सको तो पहचान लो बेटा, वरना।
2: आप ही तो कहते थे पापू कि जिंदगी में इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है, हमें अपनी गलतियां करके सीखने दीजिए ना।
1: गलतियां करके सीखते सीखते आधी जिंदगी निकल जाए तो?
2: तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस तरह मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस
3: रीता।
2: अरे
3: रीता।
2: अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? माँ जी।
0: अरे समधन जी नमस्कार।
3: नमस्कार बहन।
1: हम लोग अचानक ही आ गए।
0: हाँ।
1: तो उसे यहाँ ले आए सहेली के घर से। घड़ी घड़ी लड़की के घर आना ठीक सा नहीं लगता ना।
0: हाँ,
1: बहन जी।
0: हाँ।
1: अच्छा हुआ इत्तफाक हुआ आपसे यहाँ मुलाकात हो गई।
3: हाँ इत्तफाक ही हुआ। असल में इसे और तिलक को चाइनीज खाना अच्छा लगता है, हम सबको भी वही लेने आई थी। बस तिलक के बाबूजी को घर का खाना ही सुहाता है, उनके लिए घर पर ही कुछ बना लूंगी।
0: अरे समधन जी आप भी थोड़ी देर बैठिए ना।
3: नहीं नहीं बैठूंगी नहीं बहन जी, बस आप लोग दिखे तो सोचा मिल लूं। भाई साहब।
1: हाँ, हाँ, बहन जी।
3: लड़की के घर को कभी भी पराया घर ना समझिएगा, अभी समय हो तो साथ चलिए ना, ये भी मिलकर बड़े खुश होंगे। बहू तुम रुकोगी या साथ चलोगी?
2: अभी वहाँ क्या करना है माँ जी, मैं थोड़ी देर रुक के आ जाऊंगी।
3: ठीक है तो मैं चलती हूँ। नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार समधन जी। बर्फ की सिल्ली है बुड्ढी।
2: अच्छा अभी तो बिछी जा रही थी। समधन जी समधन जी।
1: अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? इस बात का कोई मूल ही नहीं कि वो यहाँ तक आई थी तुम लोगों के पसंद का खाना पैक करवाने और तुम लोग उनका मजाक बना रहे हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? राजो इस बेवकूफ को समझाओ कि इतनी अच्छी सास के चरण छूकर जीना सीखे। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने हमारी बातें भी सुन ली होंगी।
2: अच्छा हुआ।
1: तो मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से।
2: पापू पापू देखो मम्मी पापू चले गए।
0: अरे चले गए तो जाने देना, जाएंगे कहाँ?
4: रीता। ओ रीता क्या बात है भाई, उठो सब खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
2: मुझे भूख नहीं है।
4: चलो ना, हम लोगों के लिए माँ चाइनीज नूडल्स वगैरह लाई हैं।
2: तो जाओ खाओ ना।
4: तुम भी चलो ना, माँ इतने प्यार से लाई हैं, सब साथ साथ खाएंगे, इंजॉय करेंगे।
2: साथ साथ? किसके साथ साथ? माँ बाबूजी और आरती के साथ साथ? हम तुम तो पास पास बैठ भी नहीं पाएंगे।
4: चलो तो साथ साथ बैठ भी जाएंगे।
2: तिलक जब तक हम अलग न रहेंगे न पास पास हो पाएंगे न साथ साथ।
4: ओफ ओफ फिर तुम शुरू हो गई, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बस यही घूमता रहता है। मैं कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।
2: क्यों?
4: क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने हम बच्चों के लिए, मैं बड़ा हूँ, जब अपने कर्तव्य निभाने की बात आई तो।
2: मैं नाता तोड़ने की बात तो नहीं कह रही हूँ, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो क्या हमारा उनसे रिश्ता टूट जाएगा?
4: एक बार और आखिरी बार समझ लो, दूर होने से रिश्ता नहीं टूटता। तुम शादी करके आई तो मम्मी पापा से रिश्ता टूट गया, दिलों में दूरी हो

0: उन्हें से रिश्ता टूटता है, दरार बनेगी तुम्हारे यहां से जाने के कारण। ये प्रमाणित हो जाएगा कि तुम्हें हमारे लोग पसंद नहीं, ये घर, ये रहन सहन पसंद नहीं। और मैं पीछे पीछे तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए चला हूं कि मैंने तुम्हारा साथ देने का अग्नि के समक्ष वचन दिया है। और रीता, मुझे इतना मजबूर ना करो कि मैं अपने वचन को तोड़ने को ही मजबूर हो जाऊं।
1: तिलक, ये क्या कह रहे हो तुम?
2: ओ गॉड, बाबूजी, बाबूजी, मैं
1: तुम लोगों को बुलाने आया था बेटा, जासूसी नहीं कर रहा था, कुछ सुन लिया है मैंने, मुझे माफ करना।
0: बाबूजी,
1: तिलक, बातों को ठीक समझते हो तुम। बेटी रीता, हम बच्चों की खुशी ही तो चाहते हैं। हम वही करेंगे जिसमें सबकी खुशी हो। रो मत, हमेशा याद रखना बेटी कि ये शादी हमने तुम्हें रुलाने के लिए नहीं की थी, नहीं, हरगिज़ नहीं। अब उठो। हाँ, शाबाश आरती, खाना गरम तो करो। रीता, उसका हाथ बटाओगी?
2: जी, जी।
1: वेरी गुड, गुड, चल बेटी, शाबाश। शायद अक्षय आरती आ गए।
3: मैं देखती हूँ, आओ बेटा।
4: प्रणाम बाबूजी।
1: जीते रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो।
2: माँ, भैया को सब कुछ मालूम हो गया है, बड़े भैया ने सब बता दिया है।
3: कोई बात नहीं, तू डर क्यों रही है? जा, भाई के लिए चाय नाश्ता ले आ।
4: प्रणाम माँ जी।
3: खुश रहो बेटा।
4: अब की मुझे रिसीव करने छुटकी आई है, कितनी बड़ी बड़ी सी लगने लगी है। और आप कैसी हैं माँ?
3: ठीक हूँ बेटा।
4: रीता भाभी और भैया यहाँ से दूसरे घर चले गए और आपने मुझे बताया भी नहीं।
1: दूर रहते हो ना, वहाँ सुनते तो परेशान हो जाते।
3: और तुझे बता के क्या होता बेटा?
4: मैं आकर भाभी को खूब अच्छी तरह समझा देता।
2: तो उनको और भैया को जाने न देती, हरगिज हरगिज नहीं।
3: तो?
4: अरे तो क्या, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं माँ?
3: जबरदस्ती रोक लेता तो जरूर रोक जाते, लेकिन
4: लेकिन
3: देख बेटा, मुझे अपना घर बचा के रखना है। ईंट पत्थर का घर नहीं, रिश्तों का, भावनाओं का घर। तिलक तो जाना ही नहीं चाहता था, उसको तो हम ही ने समझा कर भेजा बेटा, क्योंकि बहू का उग्र असंतोष घर को तोड़ सकता था बेटा।
4: अब टूट नहीं गया क्या? उस तरह बना रहेगा वैसा ही रिश्ता जैसा आप चाहती थी?
3: शायद।
1: हम दोनों ने सोचा कि आखिर हम लोग चाहते क्या हैं? बच्चों की खुशी, यही ना? तो क्या वास्तव में हम जानते हैं कि खुशी कैसे दी जाए, कैसे हो? जो हम चाहते हैं बेटा, क्या वो न्याय संगत है, तर्क पर खरा उतरता है? हर निर्णय कहीं लोग क्या कहेंगे डर से प्रभावित तो नहीं है? बदलती दुनिया में अप्रासंगिक तो नहीं है हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं?
3: मैं जानती हूँ, लड़कियाँ शादी के बाद कैसे कैसे सपने सजाए रखती हैं। शायद उन सपनों को पूरा करने में हम आड़े आ रहे थे, तो हमसे प्यार कैसे हो सकता था? हमें उनको सुखी तो देखना था।
4: और आपका सुख, उसकी चिंता कौन करेगा?
3: समय और प्रभु जी।
4: आप लोग तो गुस्से को तर्क से निहत्था कर देते हैं बस।
1: यही सब समझाना था तुझे बेटा, यही सब समझाना था, इसीलिए पहले नहीं बताया मैंने। और फिर तिलक का प्यार कोई कम थोड़ी हुआ है। रीता भी शायद बदले। कभी कभी बेटा, समस्या से दूर रहकर समस्या पहचाने में आसानी होती है।
4: तो आगे क्या होगा? वो प्रभु जी और समय द्वारा रचित एपिसोड देखेंगे हम लोग। और हाँ, सोचता हूँ भाभी से मिलने जाऊंगा तो उनको एक दूरबीन गिफ्ट कर दूंगा।
1: और एक अपने लिए भी खरीद लेना।
2: मैं देखती हूँ।
3: ओह, तिलक भैया, भाभी, नमस्ते।
5: ओ छोटे छोटे, लग जा गले मेरे भाई।

0: भैया भैया, तुम कैसे हो भैया?
1: कितना मिस किया तुझे। अच्छा हूँ मैं।
0: हाँ भैया,
1: और ठीक भी हूँ।
2: प्रणाम बाबूजी। नमस्ते अक्षय भैया।
0: हेलो भाभी, मैं उधर ही आने वाला था भाभी।
1: अरे तू आए और मैं यहाँ ना हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। बस 2 मिनट लेट हो गया। और हाँ, तेरी पसंद की बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ।
0: अरे वाह,
1: ये देख।

0: ठहरो, जो कुछ तुम पूछना चाहते हो उसका उत्तर बताए देती हूँ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा आलस है। सचमुच तिलक, माँ बनने की तैयारी में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बस इस छोटे से फ्लैट में दीवारों से घिरी कभी कभी घबरा जाती हूँ। तुम जल्दी आ जाना और मेरे लिए कुछ लाना जरूर।
1: अच्छा
0: अरे थोड़ी सी ही सही, चॉकलेट तो खा सकती हूँ ना। अच्छा फोन रखती हूँ, हाँ बाय बाय।
1: ओके बाय बाय।
0: आ रही हूँ। अरे आरती।
2: हेलो भाभी, मैं तुम्हारे लिए पौष्टिक जूस लाई हूँ, माँ ने बनाया है। कहा था दोपहर से थोड़ा थोड़ा पीती रहना। और ये नई मैगजीन्स हैं, माँ ने कहा है कि तुम्हारा सारा हाल पूछकर छोटी से छोटी बात नोट कर लो। अब कैसे हैं ये मेरे भतीजे जी या भतीजी जी?
0: क्या पता,
2: काश कि आपको ट्विंस होते, एक को मैं ले जाती और एक का।
0: अच्छा ठहर, तो तुझे भी अभी इसमें जल्दी ही पढ़ना है।
2: अच्छा भाभी, भाभी अगर दो होते तो आप किसे अपने पास रखती, बेटे को या बेटी को?
0: कैसी बातें करती है पागल, मैं तो तुझे ही रख लेती अपने पास और दोनों को तेरे हवाले करके खुद घूमती रहती। ये बात है।
2: भाभी आपको यहाँ आए 11 महीने हो गए, कितना कुछ बदल गया है ना तब से।
0: पता नहीं हम तुम पहले इस तरह करीब क्यों नहीं आए। अब सच्ची सच जी जा रहा है कि तुम्हें अपने पास बुला लूं, इन 10x12 फीट के 2 कमरों में।
2: और वहाँ 12x16 के 5 कमरों में बाबूजी और माँ के पास कौन रहेगा?
0: आरती आजकल माँ और बाबूजी दोनों बहुत कमज़ोर से लगने लगे हैं।
2: आप खुद ही सोचिए ना। छोड़िए भाभी ये सब बातें, ये बताइए अपनी नोटबुक में क्या क्या लिखूं?
0: सच सच बताऊं, मुझे बदन में सूजन सी लग रही है।
2: हाँ?
0: और आंखों में भारीपन है।
2: अरे
0: और अभी अभी थोड़ी देर से कुछ कुछ जैसे चक्कर सा आ रहा है।
2: अरे अब इतनी देर से बोला क्यों नहीं आपने? मैं भैया को फोन करती हूँ।
0: अरे रहने दे, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने ना थोड़ी सी चाट खा ली थी काम वाली से मंगवा कर।
2: ओहो
0: तभी से जी अच्छा नहीं है।
2: भाभी आप भी अच्छा, ऐसा करिए अब लेटिए जल्दी से।
0: पर लेटने से और चक्कर आता है। उफ, ये 2 महीने कब खत्म होंगे।
2: आपने आपने अपनी मम्मी को नहीं बुलाया?
0: बुलाया तो था लेकिन उनकी बात ना कर आरती। आरती आरती मुझे तो चक्कर आ रहा है।
2: भाभी भाभी आपको क्या हो रहा है? भाभी भाभी हे भगवान, फोन करती हूँ। फोन 2 6 5 2 1। हेलो हेलो माँ, माँ आप तुरंत आ जाइए, माँ भाभी की तबीयत खराब हो रही है। मैं तिलक भैया को फोन करती हूँ, इन्हें अस्पताल ले चलना होगा।

0: डॉक्टर, कैसी तबीयत है?
1: देखिए, अभी इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें आराम करने दीजिए।
0: ठीक है डॉक्टर।
1: सिस्टर,
0: यस डॉक्टर।
1: मरीज को आराम की सख्त जरूरत है, उससे किसी को मिलने न दिया जाए। मैं शाम को आऊंगा।
0: ओके डॉक्टर।
2: बेटी रीता, अब कैसी तबीयत है? शुक्र है भगवान का।
3: माँ जी ठीक हूँ, थैंक यू माँ जी।
2: कैसी बातें करती है, अभी यहीं रह जाओ, ठीक हो जाओ, तब जैसा जी चाहे मैं तुम्हारे बाबूजी को टिफिन दे दूँ।
3: तिलक, मम्मी को फ़ोन किया था?
4: हाँ, वो बहुत परेशान थी, लेकिन कह रही थी कि उनसे ज़्यादा हम लोग ही तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं। वो आएंगी शायद आज ही, और जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर हम लोग अपने घर चलेंगे, तब वो बहुत दिनों के लिए आएंगी।
3: तिलक, अकेले रहकर मैंने बहुत सोचा, मैंने कितना गलत समझा सबको, अब ऐसा लगता है
4: बस।

0: वहीं रुक जाओ, यहाँ वापस आने की कोई बात ना करना।
1: लेकिन देखो ना, जब हम लोग मम्मी पापा बन जाएंगे तब वहाँ
0: मैनेज करेंगे हम लोग, जैसे और लोग करते हैं, करते ही हैं।
1: लेकिन
0: नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती रहोगी। इतना बड़ा धक्का दिया है हमने बाबूजी को, माँ को, अब हमें उनकी ज़रूरत है तो वो लोग अच्छे हो गए, फिर कल ज़रूरत ख़त्म हो गई तो?
1: तिलक कोई गलती भी तो कर सकता है।
0: गलती का एहसास इस वक्त क्यों हुआ जब तुम्हें उनकी ज़रूरत हुई? मैं जा रहा हूँ।
1: तुम भी तो बदल रहे हो तिलक, चले गए, मैं क्या करूं।
0: माँ जरा मुझे कॉफी तो बना दीजिए।
2: अच्छा बेटा, अभी बनवाती हूँ। श्याम, श्याम
3: आया माँ जी। हाँ बोलिए।
2: जरा बढ़िया से कॉफी तो बना कर ले आ।
3: अभी लाता हूँ माँ जी।
0: माँ, माँ मुझे वचन दो कि रीता से यहाँ आने के लिए नहीं कहोगी।
2: क्या? ओ तो ये बात है। अरे बेटा, मैं न कहूँगी तो और कौन कहेगा?
0: नहीं माँ, आप नहीं कहेंगी। इसने ही ससुराल वालों का अपमान करके जो जाते हैं उनको वापस नहीं बुलाया जाता। कहिए, वचन देंगी या नहीं माँ?
2: सुनिए अजी, सुनिए, देखिए ना ये तिलक क्या कह रहा है।
3: दे दो वचन, लेकिन मैंने तो उसे यहाँ आने के लिए कह भी दिया है।
0: बाबूजी, ये क्या किया आपने? आप समझते क्यों नहीं?
3: सब समझते हैं बेटे, सब समझते हैं। ये भी समझते हैं कि झगड़े से ज़्यादा कीमती होती है ज़िंदगी। ज़िंदगी जीनी भी तो है ना। झगड़े को सुलझाते रहेंगे तो जिएंगे कब? जो देर में समझता है बेटे, वो झगड़ने से समझेंगे तो नहीं, हाँ उन्हें खो ज़रूर देंगे। और हम तुम लोगों को खोना नहीं चाहते बेटे। समय और प्रभु जी एक चांस और देते हैं, है ना?
0: आप लोगों के प्यार के आगे भला कौन जीत सकता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी माला तनखा का लिखा नाटक पहचान। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थी मधुर श्रीवास्तव, कौशल बिहारी, सुमन पाठक, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर अशोक शुक्ला, आसफा फाकरी, नंदिनी चैटर्जी, अजय मुखर्जी, अश्विनी अग्रवाल और विनोद कुमार गौड़। नाटक का निर्देशन किया था राजेश श्रीवास्तव ने।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।
1: ये आकाशवाणी है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की कुछ पल प्रतीक्षा करेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम के तहत अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग खमाज में ठुमरी और दादरा। कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं राग खमाज में इस ठुमरी के साथ। आपके साथ तबला संगति की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने।

उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत अभी आप अनीता सेन से राग खवाज में ठुमरी सुन रही थी। आपके साथ तबले पर संगति पंकज कुमार श्रीवास्तव ने की थी। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग खवाज में दादरा, कलाकार एक बार फिर अनीता सेन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन सुन रही थी। इसके अंतर्गत आज आपने सुना राग खमाज में ठुमरी और दादरा। आपके साथ तबले पर संगति कर रही थी पंकज कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम समाचार रिले करेंगे, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। समाचारों की बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा।